आए मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्टल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर की पूछो जरा पूछो।

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खंती ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आज आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास। हमारे दोस्तों, हमारे चाहने वाले, हमारे प्यारे प्यारे, हमारे लवली लवली लोग, और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों, ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यहां कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरी।

आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामें से प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है।

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो, और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको शोक फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

जिंदगी एक खेल है मेरे सुनने वालों, जिंदगी एक खेल है, ये बस आप ही पर निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है, खिलाड़ी या खिलौना। जिंदगी एक खेल है, आपके लिए पेश है।

हम तकदीर से ये सुंदर सा गीत निकाला गया आप ही के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये लता जी के आवाज में आप और हमने श्रवण कर लिए। जिस इंसान के पास अच्छा गुण नहीं होता है, जिस इंसान के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वो दूसरों में कमियां निकाल निकाल कर उसकी बुराई कर कर के खुद को महान बनने की कोशिश करता है। तो ये मत करो, जरूर से कुछ अच्छा से गुण अपने में लाओ ताकि आप भी महान बन जाए।

अवश्य अवश्य, समा है सुहाना सुहाना। घर घर की कहानी फिल्म का नाम है, घर घर की कहानी। किशोर दास जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए, खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वो चला जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। Do refyai the kissen for yourself. एक सवाल है जो आप अपने आप से कर सकते हो कि Do refyai the kissen for yourself। For yourself heeft niks te maken met egoïsme. Kiezen voor jezelf heeft niks te maken met egoïsme. Het is de keuze.

सुहानी चांदनी रातें आपको और हमें भी सोने नहीं देते, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है, क्या करे बेचारा दिल। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे सुनने वालों कि आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि इसका वजह भी ये है कि जैसे लोग चाहते हैं ना आप वैसे नहीं करते, तो बेवजह आप बुरा बन जाते हैं। मदा सहे को कठपुतली मत बनो।

रेडियो भी लेकर आया है, नए नए गीत, नए नए तराना आपके लिए। गीत जो हम अक्सर नहीं सुनते हैं आपके लिए पेश किया जाता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि खसौंत है, सबसे बड़ा उपहार है। नखरोस तकदो, दैट इज ओन्स खसौंत है। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये लाइफ, ये जिंदगी आपकी है, बस अपने स्वभाव में जियो। आपके लिए वादिया मेरा दामन फिल्म अभिलाषा से आपके लिए पेश किया जाता है, और ये भी रफ़ी, पहला भाग में रफ़ी जी की आवाज़ में और दूसरा भाग में लता जी की आवाज़ में हम यहाँ से सुनेंगे।

मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कि ये डुएट हो चला है रफ़ी और लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम अभिलाषा है। किसी ने सही कहा है कि किताब से सीखो तो नींद आती है, किताब से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी जिंदगी जो सिखाती है तो है मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, जिंदगी जो सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होता है, चीजों की कीमत मिलने से पहले हो जाता है। चीजों जैसे कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसमें पहले से प्राइस लिख दिया जाता है, तो चीजों की कीमत पहले होती है, और हमारे इंसान की कीमत खोने के बाद पता चलता है। इस पर भी आप जरूर से अपना ध्यान देवे, इस पर आप जरूर से अपना ध्यान देवे, और वो ये है कि जिंदगी बहुत महंगी है, ये जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करे। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करे।

फिल्म हरियाली और रास्ता से ये टाइटल सॉन्ग आपके लिए यहाँ से नशर किया गया है। फिल्म हरियाली और रास्ता नेकंदिन ट्विन सेस्टक में पिक्चराइज किया गया है। मुकेश जी और लता जी की आवाज में, लेखक है शैलेंद्र जी। आवाज है, क्या कला है, क्या म्यूजिक है। मनोज कुमार और माला सिन्हा इसमें अपना कला दिखाए। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी।

ये गीत हमको सुनाई है गौतम वाधिया ने। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, और ये कफर हुआ गीत है। और ये गीत तो असली में गाए हैं मुकेश जी।

0: एक दो दस ऊपर से आई बस कमल बारोट और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों। और फिल्म का नाम था दिल भी तेरा और हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales.

भी पता है कि कौन अपना है, आंसुओं को भी पता है कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाता है। वरना मुस्कुराहट तो गैरों से वफा कर लेते हैं। संयम, संयम बहुत आवश्यक थे। संयम यानी कि खद्योत। संयम बहुत आवश्यक है रिश्तों को निभाने में, वरना दुनिया तैयार बैठे है महाभारत देखने के लिए।

आपने ठीक सुना, चिराग कहाँ और रोशनी कहाँ, उसी फिल्म से ये गीत निकाला गया है, ताइतो सॉन्ग। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

जरूर से भेजेंगे, जरूर से भेजेंगे। एक साल की कीमत, एक साल की कीमत उनसे पूछो जो एग्ज़ाम में फेल हुआ हो, और एक महीना की कीमत उनसे पूछो जिन्हें पिछले महीना सैलरी ना मिला हो। समय की किस्मत, समय की कीमत, समय की कीमत, एक दिन की कीमत उनसे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। एक दिन का कीमत उनसे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। एक घंटे की कीमत उनसे पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। एक मिनट का कीमत उनसे पूछो, एक मिनट का कीमत उनसे पूछो जिनकी ट्रेन एक मिनट लेट होने से मिस हुई हो। एक सेकंड का कीमत उनसे पूछो, एक सेकंड का कीमत उनसे पूछो जो एक्सीडेंट में बार बार बचा हो। इसलिए इसलिए जिंदगी की हर पल का शुक्रिया करो, इसलिए जिंदगी का हर पल शुक्रिया किया करो।

पागल है या फिर मैं दीवाना, दीवाना भी पागल को कहते हैं। आपको एक छोटा रूप में बादल और किसान के बात में करने जा रही हूँ, कहानी के रूप में आपको बताने जा रही हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसेंगे। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब पैक करके रख दिया। लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चलाता रहा तो कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? तो किसान ने बोला, कोई बात नहीं, जब बरसोगे तब बरसोगे, लेकिन मैं हल इसलिए चलाना। तो किसान ने कहा कि लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए। किसान के बात सुनकर बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो तुरंत बरसने लगे और उस किसान के मेहनत जीत गई और जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वे हाथ मलते रह ही गए। लगे रहो, भले ही परिस्थितियां हमारे विपरीत, लेकिन आने वाले समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। विपरीत परिस्थितियां माने के मुइलकत्तेद।

शक आए हो इस दुनिया में तो दुनिया देख लो ज़रा, जीने वाले थोड़ा से जी कर तो भी देख लो। इंसानियत ही पहला धर्म है, इंसानियत ही पहला धर्म है, इंसान का फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का।

दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, मेरे काम के नहीं। राजकुमार ने एक्ट की है, फिल्म का नाम हीरांजा, गाने वाला का नाम मोहम्मद रफी जी। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा सोचा उस पल को रोक लूं, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल ना रुका एक पल के लिए।

मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा आप सभी का स्वागत। मित्रों, हर्षित मुख के बारे में पिछले अमृतवाणी में आप सुन रहे थे दिल एन। आज मैं आपको दिल द्वीप बतलाने जा रहा हूँ, श्रवण कराने जा रहा हूँ। हंसमुख बनने के लिए मित्रों, यानी हंसमुख हंस पक्षी के समान मुख वाला बनना जरूरी है। तो जैसे हंस मोती चुगता है अथवा खीर ले लेता है और नीर छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य के नेत्र यदि गुण रूपी मोती ही चुगें और अवगुण रूपी कंकड़ छोड़ दें, उसके कान जब कोई चर्चा सुनते हैं तो ज्ञान रूपी खीर ले लें और व्यर्थ बात रूपी नीर छोड़ दें, और यदि उसका विवेक हंस की तरह काम करें न कि कौवे या बगले की तरह मित्रों, तो वो मनुष्य सदा हंस मुख अर्थात हर्षित मुख ही रहेगा। बच्चों, आप यदि ध्यान देंगे तो महसूस करोगे कि जब मनुष्य किसी का कोई अवगुण देखकर उसे मन में रख छोड़ता है अथवा उसकी कोई गिराने वाली बात सुनकर अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है, अथवा यदि सदविवेक से काम न लेकर बगले भक्त कपट मुनि या कौवे का सा आचरण करता है, तभी उसका हर्ष गुम हो जाता है, चेहरा पर बदलाव आ जाती है मित्रों, आचरण बिगड़ जाती है। सज्जनों, ज्ञानवान मनुष्य को ये सदा याद रखना चाहिए कि मैं तो परम हंस की सभी का एक हंस हूं, मुझे तो मोती ही चुगने हैं, मोती ही चुगने हैं, कंकड़ नहीं। मैं तो अमृतवाणी का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मुझे तो खीर ही ग्रहण करना है, नीर छोड़ देना है। ये गुण अमृतवाणी द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, इस प्रकार जो हंस मुखी मनुष्य होगा वो सदा हंसमुख हर्षित मुख भी होगा ही होगा। जो मनुष्य अमृतवाणी रूपी दिव्य गुण रूपी रत्न अथवा मोती चुगता है मित्रों और दुर्गुण रूपी कंकड़ छोड़ देता है, अथवा जो पवित्रता रूपी क्षीर ले लेता है, वो मनुष्य हंस के समान है और वही हर्षित मुख रख सकता है। तो फिर भी ये कलयुगी संसार ऐसी माया नगरी है मित्रों कि बार बार हमारी खुशी का पारा उतर जाता है। तो अमृतवाणी आपको बहुत सारी उपदेशों में युक्तियां बतलाई है, उपाय बतलाई जिनसे आपको बेहद की यानी असीम खुशी मिल सकती है। सिर्फ आपका विश्वास अटल प्रबल और सच्ची होना चाहिए। हम तो परमपिता परमात्मा का तो संतान है, तो उसने तो सारा ही ज्ञान खुशी देने वाला है मित्रों। अगर हम परमपिता का संतान है और उसके पास सब कुछ है, तो आपको सोचना चाहिए कि सारी दुनिया जिसको चाहती है ढूंढती है अथवा याद करती है, स्वयं उस परम पिता परमात्मा ने करोड़ों मनुष्यों में से आपको चुना है अमृतवाणी ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये क्या
कम बात है मित्रों, आपको चुना है अमृतवाणी ज्ञान सुनने के लिए। ये कोई लाऊ लाऊ तोरी थोड़ी ही है मित्रों, समझो समझो। तो क्या ये कोई कम बात है मित्रों? अवश्य ही आपका ऊंचा भविष्य है, आपका कोई सौभाग्य जोर पकड़ रहा है कि इतने करोड़ों व्यक्तियों में से परमात्मा ने आपको अपनाया है मित्रों, आपको अपना अनमोल खजाना दे रहा है और दिया है, और सर्वसमर्थ ने आपका विकर्मों में डूबता बेड़ा पार करने की जिम्मेदारी अमृतवाणी उपदेश द्वारा ली है। तो अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है मित्रों कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। जब आपके मन में छल कपट निंदा है तो सही रास्ता नहीं, सही मनुष्य आप नहीं हो। संदेह क्यों कर रहे हो सज्जनों? ये सत्य है कि आप हकदार हैं। परमात्मा के हर एक चीज पर आपका हक है। वो जो पिता है ना, आपके पिता के हर एक चीज पर आपका हक है। तो आप ही कहते हो भगवान तो हमारा बप्पा है, तो बप्पा के हर चीज पर आपका हक नहीं है मित्रों? तो आपको इस बात की अपार खुशी होनी चाहिए कि सारे विश्व का जो पिता है मित्रों, जिसे भक्त लोग मालिक भी कहते हैं, उसे मैंने पा लिया है अमृतवाणी ज्ञान द्वारा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा मित्रों? प्रभु प्राप्ति होने से तो सब प्राप्ति हो ही जाती है, अतः खुशी तो अपार होनी चाहिए मित्रों। मगर आप खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तो आपको भगवान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्ति से ही तो सदा खुशी होती है, और अप्राप्ति वाले की खुशी गुम हो जाती है, गुम हो जाती है मित्रों। जब आपको परम प्राप्ति यानी परमात्मा में अटल दृढ़ पक्का विश्वास हो गई, तो आपका खुशी का पारा तो दिन रात चढ़ा रहना चाहिए, दिन रात चढ़ा रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी बना दे भगवान, बिगड़ी को बनाने वाला है मित्रों। उसे तो विघन विनाशक खेवैया सुखदाता आदि सभी उपाधियां दी जाती हैं। कै नाम है भगवान को, सोचो तो गिन पई हो है। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा ऊंचा जिस आत्मा का पिता, शिक्षक और सदगुरु हो, उसे तो खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए। मगर आप तो दुखी है, प्रतिदिन कलाह कर रहे हो, शिकायत, हमार हिया हमार हुआ, ये पिरात वो पिरात, हम ये दुखी ये खुटका, क्या नहीं आप दुनिया भर के बबाल आप में हैं मित्रों। तो किसी का पिता, सज्जनों ध्यान कीजिए, किसी का पिता यदि किसी छोटी सी नगरी का भी राजा होता है तो भी उसे खुशी रहती है। तो जो शाहों का भी शाह है, स्वर्ग के राजाओं का भी राज्य भाग्य विधाता है, उसका जो गोद का बच्चों अर्थात धर्म के नाते से पुत्र है मित्रों, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए। मगर क्या बतलाएं हम, कितनी दुखी हैं आप, क्योंकि आप में भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है मित्रों। अगर किसी को यदि कोई बहुत ही योग्य शिक्षक या गुरु मिल जाए तो वो भी समझता है कि अब मैं लायक
योग्य निरोग हो जाऊंगा और कि अब मेरी तकदीर खुल जाएगी। लोग को कोई ज्ञानी मिल गया ऐसे सोचते हैं, और आपके पास स्वयं भगवान है और आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है आपको मित्रों। जिसको ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा स्वयं अमृतवाणी के रूप में सदगुरु के रूप में मिला हो, मिल रहा है, उसका तो समझो कि ऊंचा भाग्य बन ही जाएगा। विश्वास करो, यही आपसे हम चाहते हैं, विश्वास और प्रेम। और कुछ नहीं मांगत है हम आपसे, आपका धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मित्रों जरा सोचो कि आपकी कितनी ऊंची तकदीर है, ये जो आपको अमृतवाणी ज्ञान का तिलक लगा है मित्रों, ये तो भविष्य में स्वर्ग के दैवी स्वराज्य का तिलक बन जाएगा। विश्वास करो, और बार बार मैं यही बात आपको बतलाता ही रहता हूं मित्रों कि ये सब सुख शांति और स्वर्ग पाने के लिए आपको विश्वास, सत्य धारण और मेहनत करना है। बस इसी को कहते हैं सुख शांति आनंद। आप सोचते हैं इतना सहज में, यही तो प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इतनी सहज रूप में हो सकता है। है ऐसे, इस कलयुग में आपको कसरत वगैरह एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, है लंबे लंबे यज्ञ पूजा पाठ ये करो वो करो 9-10 दिन जरूरी नहीं है। शास्त्रों का बात बतला रहा हूं, जीवन के तजुर्बा का बात बतला रहा हूं, देखा हूं मैंने। तो मित्रों आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। और जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वही जीने की कला जानता है मित्रों। मगर आप तो मिलजुल के नहीं रह रहे ना, है दुश्मनी कर रहे हो। मोक्ष आकाश में नहीं है मित्रों, और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अपने विचार को ठीक करो, चित्त को ठीक करो मित्रों। आज मैंने हर्षित मुख के बारे में दूसरी भाग आखिरी भाग बतलाया। हम यही आशा रखते हैं कि इसे सुनकर आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। मित्रों मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। जहां से भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना। अमृतवाणी ज्ञान आपको मिल रहा है, इसे प्राप्त कीजिए। फिर उस प्रकार ज्ञानियों के बुद्धि कौशल से संचेत साफ उत्तम ज्ञान की तू रक्षा कर, और साथ ही इसे जिज्ञासुओं वे इस ज्ञान को जो रक्षा करने वाले हो उन लोगों को ये ज्ञान को दो। सत ज्ञान का प्रचार वे प्रसार कर तू। मित्रों, मानव मात्र का प्रथम लक्ष्य सद ज्ञान प्राप्त करना वे उसकी रक्षा करना है, बाद में उसका प्रचार या प्रसार करना है, ताकि मनुष्य मननशील हो और आगामी पीढ़ी और भी अधिक दैवी गुणों से संपन्न होवे। ये आपका कर्तव्य है प्यारे प्यारे भाई बहनों। मगर मनुष्य कौन है? अमृतवाणी के माध्यम से मनुष्य उसी को कहना जो कि मननशील होकर सर्वात्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। मित्रों, इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महानाथ निर्बल और गुण रहित क्यों ना हो, उनकी रक्षा उन्नति प्रिय आचरण करे, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान और गुणवान भी हो, यथापि उसका नाश अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। मित्रों, इस काम में चाहे उसको कितना ही दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु उस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी ना होवे, न हटे। मित्रों, कभी ना हटे। परंतु ऐसा मनुष्य तो मानव धर्म अपनाने से ही विकसित होगा। वे मानव धर्म कौन सा है? मित्रों, कौन सा है वो मानव धर्म? किसी से भी तिरस्कृत वे हिंसा न करने योग्य पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों वेदवाणी का रक्षक सर्वव्यापक परमात्मा तीनों प्रकार प्राप्तव्य वे ज्ञातव्य पदार्थ को विशेष क्रमों से रचता है। इसीलिए वे सब धर्मों नियमों वे पदार्थ शक्तियों का धारण करने वाला है। मित्रों, अर्थात वो परमात्मा सब धर्म नियमों का धारक वे नियामक है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और उसका दिया हुआ ज्ञान ही मानव धर्म है, जिसका पालन करना हर मानव का कर्तव्य है। मगर आप तो फेल हो जाते हो उस धर्म को पालन करने में, लूट लेते हो लोग को। कितने तो धर्म के नाम पे दूसरों को लूट रहे हैं, तो वो धार्मिक लोग नहीं हैं, वो लूटने वाले तो लुटेरे हैं। मित्रों, जिस प्रकार देवत्व प्राप्त कराने वाले संपूर्ण श्रेष्ठ व्यवहार वे व्रतों को भली भांति जानने वाला सर्वज्ञ उत्तम प्रकाशमय जगदीश्वर सबको प्राप्त है, उसी प्रकार हम भी
बुद्धि से, मनन शक्ति से, पहले से विद्यमान मुख्यता प्राप्त कराने वाली बुद्धियों का उत्तमता से आदर पूर्वक सेवन करे, इसी में मानव जन्म की सार्थकता है मित्रों। मगर मानवता मानव धर्म में निहित है, इसलिए कहा गया है कि ये पृथ्वी धर्म के सहारे टिकी है। क्या कहा गया है कि ये पृथ्वी धर्म के सहारे टिकी है, और धर्म के द्वारा तू ऊंचा उठ। मगर धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसे तो आप समझे कि धर्म क्या है। तो मित्रों, धर्म शब्द का अर्थ है वस्तु का स्वभाव धारण करना, या जिसके द्वारा संसार का धारण एवं रक्षण किया जाए। मानव धर्म के विषय में इसका अर्थ है मानवता को धारण करना, या जिससे मानवता को धारण किया जाए। मित्रों, महाभारत में कहा गया है कि धारण करता है, इसीलिए धर्म को धर्म कहा गया है। धर्म प्रजाओं को धारण करता है, जो धारण करने की योग्यता रखता है मित्रों, निश्चय ही वो धर्म है, वही धर्म है। फिर कहा गया है जिससे भोग और मोक्ष की सिद्धि हो वे धर्म है, अर्थात वो नियम या धर्म जिसको अपनाने से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि सर्वांगीण उन्नति वे आरक्षा हो और मृत्युपरांत सदगति हो, वो धर्म है, वही धर्म है। मनु ने तो वेद के आदेशों को ही धर्म माना है मित्रों, और व्यवहार के लिए उन्होंने मानव धर्म के बारे में बतलाया है धीरज, संतोष एवं सहनशील होना, क्षमा, अपना अहित करने वाले से बदला लेने की सामर्थ्य होने पर भी उस अहितकारी को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, दम मन पर काबू पाना, चोरी न करना, शौच, शारीरिक वे आंतरिक

रोक पा रहे हो ना। चलने दो, चलने दो फूल, चलने दो। मित्रों, पांच ज्ञान इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी के क्रमशः व्यसन है रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। पांच कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ धी बुद्धि का विकास करना, वे उसे सत्कार्यों में लगाना, विद्या ज्ञान की उन्नति करना, यानी संसारिक वे आत्मविद्या का विकास करना, सत्य सत्य व्यवहार करना, प्रिय सत्य बोलना आदि, और अक्रोध क्रोध पर संयम करना। इन मानवीय व्यवहारों के अलावा अन्य विषयों के लिए मनु ने धर्म के चार और मार्गदर्शक साधन बताए हैं। मित्रों, वेद और स्मृतियों के वचन, सदाचार और अपनी आत्मा के प्रिय लगने वाला विवेकपूर्ण निर्णय अपनाना, ये धर्म के साक्षात चार लक्षण है भक्तों। मगर मनु ये भी कहते हैं कि वह धर्म वेद शास्त्र अनुकूल और तर्क संगत भी हो, अंधानुकरण वे अंध विश्वास न हो। अंध विश्वास न करो, किसी ने ऐसे बोल दी, हाँ ठीक ठीक चलो वैसे ही करते, क्यों बुद्धि ना ही तेरे को का है सोचने को। मित्रों, जो मनुष्य वेद और ऋषि विहित धर्म उपदेश को अर्थात धर्म शास्त्र वेद के अनुकूल तर्क के द्वारा विचार कर ग्रहण करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं। वेद तर्क के आधार पर भी निभ्रम ग्रंथ है। स्पष्ट कहा गया है कि मनु ने किसी के लिए जो कोई धर्म कहा वो सब वेद में कहा हुआ है, वो धर्म सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है। मित्रों, सभी मनुष्य सब शास्त्रों वेदों सत्पुरुषों के आचरण अनुसार और अपनी आत्मा के अनुकूल विवेक पूर्वक विचार करके तथा अपने ज्ञान नेत्र से श्रुति को प्रामाणिक मानकर अपनी आत्मा के अनुसार धर्म को माने, क्योंकि जो मनुष्य वेदों धर्म और वेद अनुकूल स्मृति आदि के वचनों के अनुसार धर्म का पालन करता है, वे मनुष्य इस लोक में कीर्ति और मरण उपरांत सर्व उत्तम सुख पाता है। इसी तरह विदुर भी कहते हैं कि जहां धर्म है वहीं विजय है। कुछ कुछ मैंने आपको बतलाया, कारण कि हम यही चाहते हैं कि धर्म को अपनाओ और धर्म के बारे में बहुत ताड़ तड़क मत करो, क्योंकि तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो धर्म के बारे में, और मैं क्या जानता हूं, कुछ नहीं। तो जो कुछ मिले उसे प्रेम पूर्वक श्रवण करके आपस में बांट के बातचीत करके उस पर जियो, उसको आगे ले चलो। मगर तुम अपने में कटो मरो तो क्या बचेगा। जैसे KLM, उसका अर्थ तो आप जानते हो, मगर आज के दिन में कुछ और उसका अर्थ है। KLM के मतलब है कटो लूटो मरो, यही तुम लोग कर रहे हो धर्म के नाम पर, इसलिए हम लोग गिर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अनेक धर्मों आगे निकल रहे हैं मगर हम लोग अपना धर्म को लेकर कटो लूटो मरो उसी में लगे हुए हैं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। समय, साधन, सुविधा
और शक्ति का कभी दुरुपयोग ना करो। ये सभी

ईश्वरीय उपहार है मित्रों, मगर हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं एकदम फुल स्पीड, इसलिए दुखी हो। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। अगर आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा मेरे लिए तो मैं जरूर आपसे फिर मिलूंगा। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

ये जगत दुखों का घर है, यहाँ पर हर प्राणी मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं प्रभु। ऐसे में केवल एक जगत पिता परमात्मा का आशीर्वाद ही उसे इस माया से छुटकारा दिला सकता है। मेरे प्रभु, ऐसा ही कृपा कीजिए मुझ पर भी मालिक। यही मेरी प्रार्थना है आपसे, विनती यही है प्रभु। ओम शांति। अहंकारी मनुष्य, इसके बारे में आपको आज बतलाने जा रहा हूं। अहंकारी मनुष्य बांस के समान होते हैं। आप तो जानते हैं ना, ये बांस जो होता है ना, जिसे हम दूसरी भाषा में बांबू कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में अगर सुख से रहना चाहते हो तो फिर नम्रता को धारण करना चाहिए। नम्रता को, कहावत प्रसिद्ध है कि अहंकारी मनुष्य तो बांस के वृक्ष की तरह होता है, जो ना फल देता है, ना सुगंधी वाले फल, और ना वो अपनी छाया से शीतलता ही पहुंचाता है, बल्कि सीधा अकड़ कर खड़ा रहता है। जिस तरह से काफी लोग हैं ना, जब वो आते रहते हैं सीना तान कर, मैं आ रहा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं बलवान हूं, धनवान हूं, बहुत कुछ हूं, इस तरह से जैसे बांस खड़े रहते हैं। नम्र मनुष्य ऐसे वृक्ष के समान होते हैं, जो फल लगने से झुकता है दूसरों का, अपने रसदार फलों से तथा शीतल छाया से खुश करता है और सुख देता है। वो है मनुष्य जो जिनमें प्रेम है। ये सर्वविदित है कि बांसों के परस्पर टकराने से आग पैदा हो जाती है, और कई बार वो आग सारे जंगल अपनी लपेट में ले लेती है। प्यारे भाई बहनों, इस तरह से कई व्यक्ति हैं जो क्रूर होते हैं, अपने गुस्सा, अपने क्रोध से सारे वातावरण को एकदम बिगाड़ देते हैं। और इसी प्रकार दो अहंकारी मनुष्यों का भी अहंकार जब आपस में टकराता है ना, तो क्रोध रूपी ज्वाला अथवा अशांति रूपी अग्नि पैदा होती है, और उस सूक्ष्म अग्नि के सेवक से तो कई बार सारा कुटुंब अथवा देश भी दुखी होता है। इस तरह का काफी लोग होते हैं। बांसों के टकराने से पैदा हुई अग्नि अपेक्षा अहंकारी मनुष्य के स्वभाव की टक्कर से पैदा हुई अग्नि अधिक भयंकर है। प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रथम अग्नि से तो जंगल नष्ट होता है, परंतु दूसरी अग्नि यानी क्रोध अग्नि से तो बसे हुए गांव अथवा देश भी उजड़ जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, आप छानबीन कीजिए कि आप किस तरह का इंसान हैं, किस तरह का व्यक्ति आप हैं, इन दोनों में से हैं, या एक शीतल इंसान हैं आप। सुख शांति के अभिलाषी को चाहिए कि अहंकार को छोड़े, क्योंकि अहंकार से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के वश हुई मनुष्य की निर्णय शक्ति, विचार शक्ति अथवा शुद्ध बुद्ध नष्ट हो जाते हैं। और जिसकी बुद्धि तथा स्मृति नष्ट हो जाए, वो मनुष्य अंधे पागल के समान व्यवहार करता है। छानबीन कीजिए अपने आप में कि ये सब स्वभाव आप में भी है या नहीं है। अहंकारी मनुष्य में न ज्ञान टिक सकता है, न ही उसमें दूसरे साधनों की धारण हो सकती है। प्यारे भाई बहनों, न ही वो दूसरों के मन में प्रेम तथा सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकता है। प्यारे प्यारे भाई बहनों,
अब प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब बातों पर ख्याल करते रहना जो हम बता रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में काफी लोग हैं जिनके पास ये सब स्वभाव जो अभी हम बताए हैं वो रहते हैं। तो ख्याल करते रहना। और अहंकारी मनुष्य में जो थोड़ी बहुत अच्छे गुण होते हैं वे भी अहंकार के नीचे छिप जाते हैं। लोगों की दृष्टि में तो उसका अहंकार ही खटकता है। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपने ज्ञान तो ले लिया है, परंतु ज्ञान का जो फल नम्रता है वो भी लगना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य रूपी वृक्ष को मधुरता, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम आदि दिव्य गुण रूपी जो सुगंधित पुष्प लगने चाहिए वो आपको कब लगेगा? कब लगेंगे प्यारे भाई बहनों? कब आप सुधरेंगे? जब तक हम सुधर नहीं जाते हैं तब तक कैसे खुशी प्राप्त होगा, कैसे हम शांति को प्राप्त करेंगे? हमारे में एक बुरे आदत होते हैं कि हम पहले दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो वैसा है, वो इस तरह से है, वो कैसा है। प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप पहले अपनी ओर देखिए कि आप कैसे हैं। तो अभी हम बता रहे थे आपसे ना कि प्रेम आदि दिव्य गुण रूपी जो सुगंधित पुष्प लगने चाहिए वो आपको कब लगेंगे? जल्दी लगेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इसी के लिए ही तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से हम आपको बताते रहते हैं।

मेरे प्रभु राम सुन लो हमारी पुकार। इसी तरह से अभी आपने भजन में सुन रहे थे, तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप भी इसी तरह से अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते रहना कि सुन लीजिए मेरी पुकार और मेरे अंदर के अहंकार को निकाल कर बाहर कर दिए प्रभु। हमारा ये विश्वास है, परंतु नम्रता और मधुरता रूपी गुण तभी धारण होंगे और अहंकार तभी मिटेगा जब आप स्वयं भी पुरुषार्थ यानी मेहनत करेंगे और अपने आप को एक आत्मा मानकर चलेंगे। जब तलक आप में ये विश्वास नहीं है, तब तलक आप और हम इसी तरह भटकते रहेंगे, खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। और क्या खोज रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं और वो कैसे है? स्वयं को आत्मा मानने का मूल्य ये है कि आप ये निश्चय करो कि इस क्षण से लेकर मेरा कुछ नहीं, ये सब परमात्मा का है। मैं तो केवल इसे संभालने के लिए या उनके आज्ञा के अनुसार इसे शुभ कार्य में लगाने के लिए बनाया हूं। इस तरह से सोच विचार कीजिए आप, जब आपको यह समृद्धि रहेगी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ भी है परमात्मा का है, आपको किस चीज का अभिमान आएगा? तब तो अभिमान नहीं आएगा ना, नहीं आएगा प्यारे भाई बहनों। जब हम समझ जाएंगे, निश्चय कर लेंगे कि हम आत्मा है और ये सारे खिलौने जो हमारे पास हैं खेलने के लिए, गाड़ी बंगला इत्यादि इत्यादि, सब यहीं रहने वाला है, कुछ भी नहीं जाएगा प्यारे भाई बहनों। आपने देखा होगा कि कई धनवान व्यक्ति अपने धन से कोई धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल आदि बनाकर उसे एक समिति मतलब एक स्थितिंग को सौंप देते हैं। उस समिति के सदस्य उस धर्मशाला, अस्पताल या स्कूल को अपना नहीं मानते, बल्कि स्वयं को तो संभालने या चलाने की बनाया हुआ मानते हैं। इसलिए उन्हें अभिमान नहीं आता, क्योंकि वे समझते हैं कि उसका धनी या मालिक तो दूसरा एक व्यक्ति है। इसी प्रकार आप भी प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करो, परंतु मन में ये धारणा पक्की कर लो कि मैं निमित्त हूं, मैं बनाया हुआ हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये है तो सब ईश्वर का ही, जिसके आदेश और निर्देश अनुसार मुझे इसे चलाना है। प्यारे भाई बहनों, है आप इस तरह का व्यक्ति? आप में ये भावना तभी आएगी जब आपको ये निश्चय होगा कि आप हमेशा मतलब आत्मा इस शरीर में नहीं रहने वाली है। तभी आप में ये भावना त्याग का उत्पन्न होगा, तभी उत्पन्न हो सकता है। प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये ना समझना कि हम ये सब बातें बेकार ही कह रहे हैं। नहीं, मुझे पता है आप सभी ये सब बातों को जानते हैं, और मैं हमेशा और बार बार बोलता ही रहता हूं कि हम आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं। आप भूल जाते हैं, ये सब खिलौने में आप लिपट कर इन बातों को भूल जाते हैं, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ना भूलना कि ये सब खिलौना एक दिन छोड़ना है, ये शरीर भी छोड़ना है। तो ऐसा ना हो कि आप खेलते खेलते सब कुछ भूल जाएं, प्रभु को भी भूल जाएं, तो आप रास्ता को भी भूल जाएंगे,
तो आप भटकने लगेंगे, जबकि यही हाल हमारे सब का हो रहा है। रास्ता को हम भूल गए हैं, जिस रास्ते से घर को वापस जाना है यानी परम धाम को, वो रास्ता हम भूल गए इन सब खिलौने में लिपट कर। तो प्यारे भाई बहनों, आप अंतर्मुखी होना, ध्यान लगाना, योग करना, योग साधन करो, घर गृहस्थी में रहते हुए प्रभु की ध्यान लगाओ, परम धाम की रास्ता को फिर से ढूंढो, वही रास्ता आपको शांति प्राप्त करेगा, आपको आनंद और जितने ऐशो आराम है सब आप फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तक था आज का अमृतवाणी का प्रोग्राम। मैं आपका सेवक आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुख को अपने गले लगा लो तो तकदीर तेरे कदमों में होंगे। बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। गरीब वो नहीं जिनके पास धन नहीं, गरीब वो है जो और मांगते रहते हैं, हमेशा और मांगते रहते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। मृत्यु हर जीवन का अंतिम सत्य है। सबको मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा

मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, झुकना सीखो, इसके बारे में आपको आज कुछ बतलाने जा रहा हूं। आप देखिए, यदि अच्छे व्यवहार के नाते आपसे छोटी आयु का कोई मित्र या संबंधी आपसे मिलते हैं, मित्रों आपके आगे झुकता है, मानो झुक कर चरण को स्पर्श करने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप झट से झुककर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अथवा झुककर अपने दोनों हाथों से उसे थामकर उठाने लगते हैं। मित्रों, और यदि वो छोटा व्यक्ति आपके सामने ना झुकता, तो क्या आप इस प्रकार उसके आगे झुकते? नहीं। तो स्पष्ट है मित्रों कि दूसरों के आगे झुकना ही उनको अपने आगे झुकाना है। जो मित्रों और जो अकड़ कर रहता है, मीचा सो मीना हेर केल, उसके आगे यदि कोई रस्म के तौर पर झुक भी जाए, तो भी मन से कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। सज्जनों, आज लोग मंदिरों में जाकर परमात्मा के आगे बार बार झुकते हैं, बार बार झुकते हैं। वे जहां भी उनका कोई चित्र या उनकी प्रतिमा दिखते हैं, वहां ही वे उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्यों मित्रों? एक जन्म ही नहीं, बल्कि अनेक जन्म भक्त लोग प्रतिदिन कई बार देवी देवताओं के आगे झुकते हैं, झुकते हैं। इसका क्या कारण है भक्तों? क्या कारण है मित्रों? इसका कारण यही है कि ये देवी देवता अपने पूर्व जन्म में, अपने पुरुषार्थी जीवन में एक बार झुके थे, जिसके फल स्वरूप आज करोड़ों लोग जन्म जन्म हर दिन उनके आगे बार बार झुकते और उन्हें प्रणाम करते हैं। मित्रों, प्रणाम करते हैं। इन देवी देवताओं ने एक जीवन में नम्रता का गुण अपनाया था, जिसका उनको इतना ऊंच फल मिला कि वे वंदनीय कहलाते हैं, और भक्त लोग उनके चरणों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर अपना मस्तक उस पर रख कर अपने को धन्य मानते हैं। मित्रों, अपने को धन्य मानते हैं। एक प्रकाशमान या दिव्य जीवन के रीति दूसरों को डराना, धमकाना या अपनी पोजीशन यानी पद से उनको दबाना, मित्रों दिव्य या प्रकाशमान जीवन की रीति नहीं है, नहीं है। बल्कि जो व्यक्ति योग्य, कार्य कुशल, परिश्रमी होते हुए भी दूसरों के आगे झुकता है, लोग उसके आगे स्वतः यानी अपने आप ही झुकते हैं। मगर आप देखेंगे, आज के काफी पढ़े लिखे लोग, शक्तिशाली लोग, धनवान लोग, ज्ञानियों लोग, कभी ना तुम्हें देखेंगे, चाहे भी छोटे उम्र में, किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में आप उनके साथ गोली गुट्टी और कुछ भी खेले होंगे, मगर अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है ना, तुम्हें क्या, तुम्हें वो पहचानता नहीं, झुकेगा तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बड़े हो, छोटा हो, झुको। अरे प्रेम व्यवहार देने से
आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपका कुछ और बनेगा मित्रों, बनेगा। हमारा कर्तव्य या लक्ष्य किसी को झुकाना नहीं है मित्रों, बल्कि योग्य बनकर अहंकार को छोड़कर कर्तव्य करना है, और ऐसा करते हुए भी स्वयं झुक कर रहना है मित्रों। जैसे कि एक फलदार पेड़ झुकता ही है, देखिए एक आम का पेड़ हमेशा झुका ही रहता है, उस पे जाकर आप तोड़ो, फल ले खाओ उसके नीचे बैठकर मित्रों। जिस वृक्ष को जितना अधिक फल लग जाता है उतना ही अधिक वो झुक जाता है मित्रों, और उतना ही वो लोगों की फलों से सेवा करके उन्हें संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ऐसे ही सज्जनों, ऐसे ही ज्ञानवान व्यक्ति भी नम्र चित्त होकर सद्गुणों रूपी फल से सबको संतुष्ट करता है। मगर करते हो आप, ये सवाल कीजिए अपने आप से। हम तो कह रहे हैं कि करना चाहिए, मगर करते हो आप? तो मित्रों, जब हम ऐसा करेंगे तो हमसे नीचे कार्य करने वाले देखेंगे कि ये व्यक्ति इतना योग्य और कार्य कुशल होते हुए भी इतना निरहंकारी है कि हम छोटों मोटों से मिल जाता है और हमारे आगे भी झुकता है। वे भी देखेंगे और खुश होंगे मित्रों।

अपने मन में बोलेंगे, अरे ये तो इसकी महानता है, वरना हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये हमसे स्नेह और सहानुभूति रखता है और हमें हमेशा अपनी छाती से लगाए रखता है, कभी हमें झुकने ही नहीं देते हैं, झुकने ही नहीं देता है। मित्रों, ओहो सज्जनों, ये तो बहुत महान है, ये तो बहुत महान है, ये तो मनुष्य चोले में कोई फरिश्ता या देवता जैसा है। इसके लिए तो हम जान भी दे देंगे। मित्रों, ऐसे लोग आपके बारे में सोचेंगे, जब आप भी झुकना जानेंगे तो हमारा जीवन वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्यार के कारण लोग काम करे, न कि अहंकार के कारण। मित्रों, अहंकार से आपको प्रॉब्लम मिलेगा, स्थिति बिगड़ जाएगा। मानते नहीं हो तो कर देख लो, एक दिन परीक्षा कर लो। मित्रों, अहंकार से चलो तो देखना। सज्जनों, हम स्वयं योग्य बने, यानी उस लायक बने, स्वयं अपने हाथों से कार्य करें, दूसरों को कार्य सिखाएं, उनके कार्य में मददगार बन जाया करें, फिर देखें कि क्या रोप डालने या पोजीशन यानी पद को जितलाने की जरूरत रहती है। नहीं, सब आपके काम करेंगे मिलकर, क्योंकि आपके अंदर में प्रेम है ना, तो प्रेम के भूखे हैं वे लोग और भगवान भी, मगर आप तो अहंकारी हो, इसलिए आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है। मित्रों, प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, बल्कि आप देखेंगे कि यदि आप आयु और पद में किसी व्यक्ति से छोटे हैं, परंतु योग्यता और कार्य क्षमता में उससे बड़े होते हुए भी उससे स्नेह तथा सम्मान से व्यवहार करते हैं, तो वो बड़ा व्यक्ति भी, मित्रों, तो वो बड़ा व्यक्ति भी आपसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, प्रेम सच्चाई विश्वास से जीवन में उतारें। यदि अहंकार के वश होकर वो कभी कुछ उल्टा अर्थात न्याय विरुद्ध आपसे बोल भी लेगा, तो भी बाद में उसके मन में ये संकल्प उठेगा कि ये इतना योग्य, समझदार और अच्छा कार्य करता है, मैंने इससे जिस ढंग से बात की है वो गलत है। मित्रों, दुश्मन को जीतने के लिए आपको प्रेम बांटना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप अहंकार को छोड़ें, तभी आप अपने जीवन में सुख शांति का प्राप्त कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको बतलाए हैं मित्रों, ये सचमुच मनुष्य को नम्रता के गुण का वास्तविक महत्व जतलाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। मित्रों, और ये जात पात की झगड़े, यही तो इंसान की नादानी है। परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। मित्रों, किसका आश्रय लेंगे आप, किसका? शुभ भावना के मधुर बोल हीरे मोती से भी मूल्यवान है। मित्रों, शुभ भावना के मधुर बोल हीरे मोती से भी मूल्यवान है। इसे आप अपनाइए, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा धनवान ज्ञानवान शक्तिशाली सब कुछ होते हुए भी आप शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, प्रभु
आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय का उत्तराधिकारी बन, तू धर्म का उत्तराधिकारी बन और अपने भीतर की कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। यही मोक्ष है, यही अमृतवाणी है।

आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा आपको आज के सत्संग में उपस्थित भक्तजनों, एक ऐसी बात है जिसकी महिमा मैं कह नहीं सकता। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। अगर आप ध्यान दें तो सदा के लिए निहाल यानी संतुष्ट हो जाएं। वो ये है कि ऐसा कोई परमार्थिक साधन है ही नहीं जिसके लिए हम कह सके कि इसको तो हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसको सब कर सके। सज्जनों, कारण की परमात्मा प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य तो सभी मनुष्य में है, सभी में है, परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य सभी मनुष्य में नहीं है, नहीं है सज्जनों। जैसे कामना की पूर्ति करना और कामना का त्याग करना, ये दो बातें हैं सज्जनों। कामना की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। हम इंद्र बन जाए, महाराजा बन जाए, बड़े धनी बन जाए, कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर ले, तो भी कामना की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, असंभव। भक्तों, परंतु कामना का त्याग हो सकता है, कामना का त्याग हो सकता है। संसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता, और परमात्मा की प्राप्ति सभी कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य, जो भी धर्म, संप्रदाय, जात पात, जो भी हो, कैसा भी हो, क्यों ना हो, कोई भी हो, सभी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है, वही काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेंगे वो? क्या कर सकेंगे आप फिर? सज्जनों, सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं तो फिर उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, असंभव है ना भक्तों। परमात्मा की प्राप्ति करने में, सांसारिक कामना का त्याग करने में सब के सब पराधीन है। इस सत्संग में आज इतने लोग बैठे हैं, कोई सांसारिक कामना पूरी करने में समर्थ हो तो बताइए। किसी में वो शक्ति नहीं है सांसारिक कामना पूर्ति करने के लिए, कभी कोई समर्थ है ही नहीं सज्जनों। परंतु कामना का त्याग करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में सबके सब समर्थ हैं। वो शक्ति है आप में, कोई असमर्थ नहीं है। भगवान को सभी प्राप्त कर सकते हैं, मगर इच्छा चाहिए, लगन चाहिए और विश्वास सबसे मूल्य बात है। विश्वास, सबके सब पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं है, सबके सब योग्य, कोई अयोग्य नहीं है।
भगवान की प्राप्ति में। संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति दो मनुष्यों को भी कभी एक समान नहीं होती, पर परमात्मा की प्राप्ति सबको एक समान यानी बराबर होती है। बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं है।

पहले नारद व्यास सुखदेव आदि महात्माओं को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है उसी तत्व की प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, ये असंभव बात नहीं है। हिम्मत और विश्वास चाहिए। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र अथवा ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, अरे अनपढ़ हो अथवा पढ़ा लिखा हो, निर्धन हो अथवा धनवान हो, सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें कोई भेदभाव और जात पाठ का आवभाव नहीं है, नहीं है। सज्जनों, इसमें आप खूब शंका करें, शंका टिकेगी नहीं, नहीं टिकेगी, क्योंकि ये सत्य है कि भगवान सभी के लिए है। सज्जनों, भगवान सभी के लिए है। आज का उपदेश भी यही है कि भगवान सब के लिए है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, आजादी नहीं है, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है, दूसरों के अधीन है। सज्जनों, दूसरों की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरों की सहायता लिए बिना अकेला कोई सांसारिक भोगों को भोग नहीं सकता, भोग ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबको कोई ना कोई का सहारा लेना पड़ता है। अगर सांसारिक भोगों के लिए आप मरते हो तब, परंतु परमात्मा की प्राप्ति अकेला ही कर सकता है, तुम अकेले ही कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ विश्वास और मेहनत और सच्चाई, ये तीन खंभे अमृतवाणी इसी पे टिके हुए हैं। सच्चाई, विश्वास, मेहनत आप में है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो। सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति में सब के सब स्वतंत्र है, आजादी है आपको। परमार्थिक बात बताने वाले भी हर समय तैयार हैं, हर समय तैयार हैं, और जो नहीं बताना चाहते हैं वो परमात्मा के सही रास्ते पर चलने वाले भक्त या गुरु नहीं है, प्रचारक नहीं है। ठीक, तो उनको आप कैसे गुरु मान सकते हो, कैसे गुरु मान सकते हो? वे तो लुटेरे हैं, ठग हैं, लूटने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से आप बच के रहें सज्जनों, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी का अधिकार है, सभी का, हर एक परिवार के बच्चे का अधिकार है अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो हम, अगर परमात्मा हम सभी का माता पिता है, तो उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमको कौन रोक सकता है? कैसे रोकेंगे? असंभव, नहीं हो सकता है। सज्जनों, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं, तभी तो आप परमात्मा से नहीं मिल पा रहे हैं, अन्यथा कौन रोक सकता है आपको? सज्जनों, प्यारे प्यारे भाई बहनों, तूने प्रभु को धन में ढूंढा, कभी ना अपने मन में ढूंढा, भूल गया माया के बंदे, तुझ में बसे है भगवान। अरे इसको तो विश्वास कर प्यारे प्यारे भाई बहनों, फिर तू देख तमाशा,
कैसे भगवान आपके जीवन में नाचते गाते आ जाएंगे, मगर आप तो भगवान को खदेड़ रहे हो और दुनिया के वस्तु को अपना रहे हो। झूठ छल कपट निंदा चुगली चाई, सज्जनों समय साधन सुविधा और शक्ति का कभी दुरुपयोग ना करो, ये सभी ईश्वरीय उपहार है। मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज मैंने आपको पहला भाग परमात्मा सब के लिए, उसके बारे में आपने पहला भाग सुना। आने वाला सत्संग में आप दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा भाग यानी आखिरी भाग सुनेंगे। ये ना भूलना कि बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। और दूसरों को गिराने की कोशिश में तुम स्वयं गिर जाओगे। सज्जनों इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य को अपनाओ, सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

सुनने वालों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हूँ संजय और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे।

जहाँ खुशी है तो कहीं भी गम भी हो सकता है, तो जहाँ गम है भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि उन्हें शक्ति प्रदान करे।

जो तैयारियां कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती जो ज्ञान का भंडार देने वाले हैं, उन्हें भूलना नहीं।

जैसे कि अभी आपने सुने हरिओम सरन जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन। सुनने वालों, ऐसा हुआ कि प्रश्न गुरु महाराज जी, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और उनका ये नाम क्यों पड़ा, बताने के कृपा करे, ऐसा प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न रखा गया तो उसका उत्तर ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक शब्दादिक और एक तात्विक।

जाता है कि शब्दिक अर्थ जब लिया जाए तो पशुपतिनाथ पशु पति और नाथ तीन शब्दों से और जुड़ा हुआ है, अर्थात पशुओं का पति वह नाथ। पति का अर्थ होता है पथ रखने वाला। कहा गया है कि नानक पथ पति जाइए जा पति राखे सोई। नाथ अर्थात भगवान। इस अवप्रकार पशुपति नाथ का अर्थ हुआ पशुओं का रक्षा करने वाला भगवान।

जय माता दी जयकार के साथ ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनवलो, भारत में एक गांव कहा जाता है मोहनजोदड़ो नाम से। और एक बार ऐसा हुआ कि एक भयंकर बाढ़ आए और वो पूरे गांव वहां से लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो एक गांव था और वहां पर खुदाई हो रहे थे, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा जो हम आर्कियोलॉग कहते हैं, और वहां से भगवान शिव का एक बहुत पुरातन तस्वीर मिली। इसमें भगवान शिव ध्यान के अवस्था में बैठे हुए हैं। तथा उनके चारों ओर पशुओं बैठे हुए अर्थात

जाते हैं चित्रित में और स्पष्ट भगवान शिव को पशुओं की स्वामी के रूप में और चित्रित किया गया है। वैसे भी हम देखे कि भगवान शिव के गले में सर्प को अवधारण किया है। वाहन भी एक वृषभ यानी कि एक बैल है। केवल भगवान शिव के ही नहीं, सभी धर्मों के अनेक और देवी देवताओं के वाहन पशुओं ही है। जैसे देखा जाए कि सरस्वती माता का वाहन हंस है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, गणपति का वाहन मूषक है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह और रोम का देवता विनस का वाहन

संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा और रचित इस सृष्टि के अभिन्न वे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतारित लिया।

विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कश्यप और वारह अवतार पूर्णताय पशु रूप में ये थे और नरसिंह अवतार आधा नर और आधा पशु रूप में अवतारित थे।

ईश्वर ने तो हमें कितने ही अवसंकेतों द्वारा समझाया है, पशु भी परमात्मा की ही रचा तथा परमात्मा के ही रचना है और उसे प्रिय है।

रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने कहे है कि मम माया संभाव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उप जाया अर्थात ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है और भगवान ये भी कहते हैं कि वे सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सभी हमारे प्रिय होते हैं। समझ समझ के समझो, ये भी एक समझ है क्योंकि इसमें हमें किस प्रकार दृष्टि डालना है। जितना चराचर जितना जीव है, कहावत है कि सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

आ गया है कि अखिल विश्व मोर उपाया सब पर मोही बराबर ही दया कि सब पर मोही बराबरी दया ये संपूर्ण विश्व मेरे पैदा किया हुआ है अथ सब पर मेरी और बराबरी दया यानी कि बराबर का और दया है।

कवि ने इन्हीं अवभावों को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, कि मानो पशु पक्षी लता पदप कीट पतंग सब में प्रभु नित्य वास रहे। सब में उनके अंग कहने का भाव कि इस अवधारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसीलिए प्रभु को अप्रिय है। परंतु ये सभी सत्य ही है। इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कृत्य है। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया है।

रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। सुनने वालों, ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और यहाँ से औख्तन भजन प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। जो छुट्टी मनाने के लिए हमारे देश में आए हैं उनको बहुत से स्वागत किया जाता है। हमारे देश हॉलैंड जो जिसमें चार ऋतुएं हैं, विंटर, विंटर के बाद में आ जाता है लंत, फिर सोमर आ जाता है और सोमर के बाद में फिर हरफ्स आ जाता है, और जब ठंडी का समय होता है तो एक देश जो फूलों से भरे हुए है और पेड़ों तथा सभी वृक्षों जिसमें पत्ता नहीं होते हैं, पर एक ऐसा देश है जहां पर आपके लिए बहुत सा व्यवस्था किया गया है। अनलांत मेट द मेस्टर मिशेयास मिस्किन। दुनिया के हर एक अवलोक आते हैं हॉलैंड का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये देश में 631 सैसोंदतेन दर्तक म्यूजियम से अनलांत फॉल मेट खस्कीदनिस एंड कुंस्ट।

सुनने वालों, हम आज आपके साथ औक्तन प्रोग्राम में जुड़ गए हैं और ये कार्यक्रम में मैं आपके लिए पहला जो हमारा मांग किया गया भजन रखने वाले हैं।

तुम अपने रंग में माँ दुर्गे। दनाख फोर पार्क लाइट्सफेन आनंद शर्मा ग्रोथ हैंडल बेफे जिनका तार का नंबर 0655732867 है। ग्रोथ हैंडल के कोई भी और सामान आपको जरूरत है तो जरूर भाई आनंद शर्मा से मालूमात कीजिए। कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती है, इच्छाओं का क्या वो तो पल पल बदलती है।

अगला स्पॉन्सर किया गया और भजन जो भी दना फोरक पारक लाइट सफेन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रॉइट, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी है, जिनका तार का नंबर 0622795862 है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन

जब भी कोई काम कीजिए तब माता रानी का ध्यान धरिए। और ये सुंदर सा भजन जो हमारे लिए स्पॉन्सर किया गया है ख्रोत हांदल जो लाइसोफेन फोर पारक दनहाक्षे शुंदा खुरुंतन एनफ्राइट जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहलाल जी है जिनका तार का नंबर त्वेई त्वेई सेवन एक फाइव आठ सेस त्वेई है।

दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है।

सुनमलो, अगला जो हमारा स्पॉन्सर किया भजन है, फोर पारक दनहाग शहर लाइटसफेन दे हा एर बॉ एंड ऑंडरहाउस बद्रैव, जिनका मालिक श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी है, जिनका तार का नंबर 9626 0241 है। उनके ओर से ये सुंदर सा सरस्वती माता का भजन जो हम आपके लिए प्लेयर पे रख देते हैं।

वीणा वादनी ज्ञान की देवी, ये सुंदर सा भजन जो हमारे स्पॉन्सर किया गया प्रोग्राम जो श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने जो DHR बाउ एंड ऑन द रोड्स बद्रेव का मालिक है, जिनका तार का नंबर 0626 0741. अगर आपको कोई प्रकार के ऑनरहाउस वर्कशॉप हेदन के बारे में प्रश्न करना है तो देन हाग शहर 4 पार्क लाइट्स ऑफ एन से श्रीमान हरिदत्त रोहित जी को जरूर और मालूमात कीजिए।

दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है।

ये सुंदर सा भजन जो देनहाग मैकेन स्ट्रात 6 हिंदू बासिस स्कूल फाहुन फरेनिगिंग अलगमेने हिंदू अंडरवाइज नीदरलैंड की ओर से रखा गया। और सुनने वालों, अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं, पर इस ओर बढ़ने से पहले जरूर इस बात को जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले में पेन इसीलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाए कि हमारी गलतियां को मिटाना अब आसान नहीं है। अगला जो हम भजन जो हम चुन करके रखे हुए हैं वो है सुरिनाम लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर, जिनका सभापति श्रीमान सुभाष महावीर जी है, जिनका तार का नंबर है 00597867577। हम उनके ओर से ये सुंदर सा भजन आपके लिए रखने वाले हैं।

ये सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले है सूरीनाम लिफोर्नो मैनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वैख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर जिनका सभापति सुभाष महावीर जी है। हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

गीत में गाकर सुना दे कि जब से हो गए हैं यंग, हाँ आप जवान हो जाएंगे तो जरूर से ऐसा ऐसा दर्द दिल में समाएगा। और कहता है कि अच्छे के साथ बुरा भी, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसे आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप जरूर ये मानेंगे कि बात सही है।

मेरा दिल, हाय मेरा दिल फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। हाय मेरा दिल फिल्म का नाम 1968 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1968 कितने बीते हुए समय लग रहा ना, और वाकई में समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं रखते।

बाद। दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है, पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है, पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। आत्मा शरीर में कहाँ और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु

0: आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है, बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवनदायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं। शरीर बिल्कुल निर्जीव सा निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मारा हो। सोचिए जरा कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आस पास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते, वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं,
1: अरे पापी चल, आज तेरा समय पूरा हुआ, तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं।
0: मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है, आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहाँ से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जननेंद्रिया। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्म रंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है, यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार ब्रह्मरंध्र या मुंह आंख नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी, दिव्य मार्ग देवयान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेन्द्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मर कर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांति पूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्म पूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है, शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं, जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में दो मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान देवों का मार्ग और पितृयान पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है, जहां प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटे हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हो, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है, उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के चार द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हो तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि
2: मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम दे रही हूँ।
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मन्ना दे जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत तेरी गर्म कहानी, ये आप ही जानते हैं और परमात्मा जी जानते हैं। जैसे हमने अभी कथा में सुन रहे थे और पंडित जी बता रहे कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सब पर नोट करता है कि हम क्या करते हैं। एन सेखेक ओक बाई देस यू एग गवेतन इज यू रेख्तर। जो कथा का हमने विश्राम दी थी यहाँ से हम आपके लिए
1: जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है, देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसान से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो, वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं भटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल, मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है।
2: दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फल स्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफाई या पर पुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नर्क में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुअरनी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या व्यभिचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध सुअर हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया सियारन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है जहां जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि ये
1: सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक वो नरक है जहां उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहां इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं।
3: यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त निर्धन निश्चित अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट, अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है, तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौआ बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है, चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है।
1: निंदा, परनिंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा, कलंक और कलह फैलाए, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देख कर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौआ या चील की योनि में जाएंगी, जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौए को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है, जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए, उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी।
4: जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट, सुअर घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में बहरे अंधे कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार सत्य प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाएं, तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति दान पुण्य सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है लेकिन वो अंत नहीं एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकारमय रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो ताकि जब हमारी आत्मा देह त्याग तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो

बात तो सही है कि नेकी तेरा साथ चलेगी बाबा। और ये सुना दी हमको आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी की आवाज में नेकी तेरा साथ चलेगी। फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान। और हम देख रहे हैं ये फिल्म नई कंटीन सेफ अंतक में रिलीज किया गया है। आपको लेकर चलते हैं देखे तो एक बार फिर महेंद्र कपूर जी के आवाज में और क्या फरमा रहे, जरा हम मिलकर सुने।

अवश्य अवश्य महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी है कि क्यों करता है हेरा फेरी, ये दौलत ना आपके है ना मेरी है, ये दौलत हमको कमाना पड़ता है, ये जीवन सफल बनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, औरों को काम आने के लिए।

मदरसा हनुमान चालीसा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी इतनी फास्ट, इतनी चटक जो आप सुनते ही और इसे पसंद करने लगे होंगे। कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, क्यों कुछ भी हो जाए, जैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, तुम हारना नहीं और याद रखना तुम्हारा

सुंदर से बात है एक दादा दादी और एक पोता के। दादी बोली, आंगन में मोर पंख मिला है। दादी बोली कि आंगन में मोर पंख मिला है, तो दादा बोला, जरूर मोर आया होगा। पर पोता बोला, हो सकता है कि कृष्ण जी आया होगा। ये दादा दादी और पोता का विचार है एक मोर पंख पर जो आंगन में मिला।

शकी और कुमार शानू जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत, हाँ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और नए सॉन्ग जो रिलीज किया गया है, पेश किया गया है आपके वास्ते। हम वो पीढ़ी है, हम वो पीढ़ी है जिसकी ना हंसी असली है ना खुशी, जिसके ना ख्वाब पूरे हुए और ना ख्वाहिशें। हम अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं पर किसी को एहसास तक नहीं होते हैं। हम अपनी हंसी से अपने दर्द और तकलीफ छुपा लेते हैं। हमें तजुर्बे हमारी उम्र से भी ज्यादा है, हम अपने अंदर कई जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें समझना आसान नहीं है।

सुंदरता गीत मेरे प्यारे सुनने वालों की भुलान नहीं देना जी, भुलान नहीं देना, आप वाकई में भुलान नहीं देना, क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं आपकी सेवा कर रही हूँ ये आशा उम्मीद के साथ कि आप जरूर से उस पार बैठकर और सुन रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। जैसे भी परिस्थितियां हो मेरे प्यारे सुनने वालों, उसमें जरूर से खुशियां ढूंढो, खुशियां ढूंढो, खुशी से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगा और जो गम है ना वो दूर हट जाएगा। गम भी डर के भाग जाएगा, ये सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या काम है। तो हंसो, मुस्कुराओ,

गणपति बापा डीजे रिमिक्स आपके लिए, डीजे रिमिक्स आपके लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये दिन आपको, ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ दे। कहते हैं कि जब जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नहीं, जब बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नया जीवन ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ ईश्वर की असीम कृपा, रहमत और बरकत भी लेकर आती है। उसकी किलकारियों से घर का आंगन महक उठता है, उसके मासूम कदमों से आशीर्वाद का प्रभाव होता है। बेटी केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके दुआओं का फल और उनके जीवन के सबसे सुंदर पूजनीय होती है। जिस घर में बेटी होती है वहाँ प्यार, अपनापन और सुकून का उजाला कभी कम नहीं होता। सच ही कहा गया है बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार हो।

रफ़ी जी के ये सुंदर दर्द भरी गीत भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ज़रूर से आपको यहाँ से चुने हुए गीत पसंद आते होंगे।

very beautiful song of Rafiji. कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. हाँ दोस्त, कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. ऐसा नहीं लड़ना कि कोई के हादसा पहुंचाना, नहीं, बल्कि जिंदगी अपना कुछ बनने के लिए लड़ना पड़ता है. और आसान करने के लिए समझना पड़ता है. वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो. अगर कुछ अलग करना है तो ए दोस्त, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो. भीड़ साहस तो देती है, भीड़ में चलोगे तो साहस तो देती है, पर पहचान जो आपका है ना, वो छीन लेता है.

मत मर मत हारो और ना ही घबराओ, ना ही रुको, क्योंकि पहाड़ से एक उपमा है, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए ये गीत।

0: यार मल्होत्रा जी की आवाज में कि तेरा हूँ यारा, वेरी रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया
1: द न्यू पार्फम।
0: ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। लव इज इन द एयर, लव इज इन द एयर।

0: दर्द भरे गीत भोजपुरी में यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है। मेरे दोस्तों, आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार स्वीकार होए और ये आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप जरूर से ये दिन, ये पल हंसी में जरूर से गुजारे।
1: मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

औरत अपने पति से कब तक लड़ती है? जब तक उसके दिल में मोहब्बत की उम्मीद बची रहती है। लेकिन जिस दिन वो उम्मीद मर जाती है, उस दिन से औरत खामोश हो जाती है। मर्द ये समझ ही नहीं पाते, बीवी का झगड़ना, उसकी जिद करना असल में उसके प्यार का सबूत है। क्योंकि जो औरत अब बोलना ही छोड़ दे, समझ लो उसके दिल का कत्ल हो चुका है। मर्द सोचते हैं कि छत और खाना देना ही काफी है। नहीं, औरत को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसे प्यार, इज्जत और अपनापन चाहिए। जैसे स्त्री से मरा हुआ कपड़ा जिंदा हो उठता है, वैसे ही सबके सामने इज्जत देने से एक बीवी की रूह तक जिंदा हो जाती है। याद रखना, औरत की खामोशी सबसे बड़ा इल्जाम है।

0: हमार जान ये सुंदर सा भोजपुरी गीत आपके लिए इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। आपको पसंद आ रहा है, आप बता रहे हैं, ये मुझे भी सुनकर अवश्य अवश्य बहुत खुशी हो रहा है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आज की रात स्ट्रीट टू फिल्म का नाम
2: इस हुस्न पे
0: स्पेशल आपके लिए

कपड़े उतार कर जिस्म की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती, वो तो बस एक पल का नशा है जो सुबह होते ही उतर जाता है। मोहब्बत तो तब साबित होती है जब वो औरत टूट रही हो और तुम उसका सहारा बनो। वो औरत जो तुम्हारे सामने खुद को बिखेर देती है, वो तुम्हारी जीत नहीं, वो उसका भरोसा है। वो तुम्हें अपने जिस्म से नहीं, अपने यकीन से अपनाती है, और अगर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया तो समझो तुमने सिर्फ एक दिल नहीं बल्कि एक औरत का विश्वास, उसकी इज्जत और उसका सब्र तोड़ दिया। याद रखना, बिस्तर पर आ जाना सबूत नहीं कि तुमने उसे पा लिया, बल्कि ये सबूत है कि उसने खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया था। कपड़े उतार कर जिस्म की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती, वो तो बस एक पल का नशा है जो सुबह होते ही उतर जाता है।

इज्जत किया करो उसकी, जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। पति पत्नी का रिश्ता खून से नहीं, एहसास से जुड़ता है। एक इज्जत की पति पत्नी का रिश्ता खून से नहीं, एहसास से जुड़ता है। एक बोल दे तो दूसरा चुप रह जाए, यही प्यार की समझ है। जहां मैं की जगह हम आ जाएं, वहीं से जिंदगी संवर जाती है। रिश्ते को निभाने के लिए शब्द नहीं, हर दिन एक रिश्ते को निभाने के लिए शब्द नहीं, नियत चाहिए होती है। हर दिन एक दूसरे को समझना ही असली मोहब्बत है, और जब दोनों एक दूसरे के दर्द को अपना लें, वही सच्चा विवाह कहलाता है। पति मर्द चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दुनिया के सामने सख्त क्यों ना दिखे, लेकिन उसके दिल का सबसे नरम कोना उसकी पत्नी के लिए होता है। माँ बाप, भाई बहन और दोस्त जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन असली सुकून और अपनापन सिर्फ पत्नी से मिलता है। पत्नी ही वह शख्स है जिसके सामने मर्द अपने डर, दर्द और थकान खुलकर बांट पाता है। उसके बिना घर दीवारों का ढेर बन जाता है और जिंदगी खालीपन का बोझ लगने लगती है। इसलिए कहा जाता है, मर्द सबका सहारा बन सकता है, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत

0: आपने ठीक सुने, आपने ठीक सुने, जो बेन नौतियाल जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत आपने सुने, मैं भी सुनी, मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए, वफाना राजा आई।
1: इसी पढ़े लिखे मूर्ख ने लिखा है कि रिश्ता हमेशा स्त्रियां तोड़ती है, लेकिन एक बात याद रखना, स्त्री जितना त्याग करती है ना, एक पुरुष कभी नहीं कर सकता है। स्त्री अपने हम सफर को गलत पाने पर भी उसको सुधारने की कोशिश करती है, अपने बच्चों के लिए उसी के साथ रहती है और कभी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन पुरुष एक स्त्री को गलत पाने पर तुरंत छोड़ देता है, इसलिए स्त्री से आप कभी भी जीत नहीं सकते।
0: फिल्मी तर्जनी पर यहां सुनेंगे हम। सिंह की आवाज में जीना भी क्या है जीना।

0: तो जिए कैसे, ये सुंदर सा गीत पवन सिंह जी की आवाज में फिल्मी तर्जनी पर अपनी ही धुन पर ये लिखकर और डाल दी है और यहाँ से हमने भी चला दी है हम सभी के वास्ते।
1: क्या आपको पता है मर्द कब रोते हैं? नहीं, वो तब नहीं जब कोई उन्हें धोखा देता है। मर्द तब रोते हैं जब जिंदगी उन्हें बेबस कर देती है। मर्द रोते हैं जब माँ का आशीर्वाद सिर से उठ जाता है। मर्द रोते हैं जब जेब खाली होती है और बच्चों की ख्वाहिश बड़ी। मर्द रोते हैं जब बेटी डोली में बैठती है और वो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट जाता है, पर किसी ने देखा नहीं, क्योंकि इनके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, ये दिल के अंदर ही गिरते हैं। वहीं से झुर्रियां बनती हैं, वहीं से सफेद होते हैं बाल, वहीं से कांपने लगते हैं हाथ। समाज कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, पर सच ये है मर्द हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है, बस दिखाता नहीं। अगर आप किसी मर्द की इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि

माँ ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है, घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता, खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो तेरा बेटा खा लेता है।

अरिजीत सिंह जी के आवास में सुंदर भरी, प्यार भरी, दर्द भरी, एहसास भरी माँ के लिए, माँ बेटे के लिए, माँ पुत्र के लिए, माँ बेटियों के लिए, माँ माँ होते हैं वो सबको अपने ही दिल में, अपनी ममता में समेट कर और रखते हैं और सबको प्यार से रखती है,

से कोई मातम नहीं करना, नहीं ये दर्द जो है, दर्द जो है, दर्द आते हैं और जाते हैं, सुख आते हैं जाते हैं, पर हमें संभल कर और होश हवास में ये सब को सामना करना पड़ता है। अगर हम सामना नहीं करेंगे तो हम टूट जाएंगे, लूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये जिंदगी जो हमें मिले है मेरे प्यारे जीवन दोस्तों, ये जीवन को हमें सुविधा से सोच समझ कर और आगे बढ़ना है। दुख में घबराना मत और जो सुख आए तो इतराना मत। बैलेंस बैलेंस बैलेंस बनाए के रखना, इसी में अपना

का हैप्पी स्टेशन फार हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होठों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरी जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दवाई के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं, आप ही का हैप्पी सीजन फा होने निस्ताई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम।

मेरे गीत अमर कर लो, ये होतों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होत आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठो डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जब दो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं। दोस्तों आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आपका, अगर आपका ख्वाहिश है, अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

ध्यान करो, तू आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। दिलों वालों की सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर वीफे रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 4 मिनट व्यतीत हो चला है, 12:04 फुटवाल, और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले भैया राजन द्वारका जिन्हें कार्यक्रम पेश किए, भैया राजन द्वारका को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने तरफ से मैं श्रीमान राजन द्वारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। भैया द्वारका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक शुभ दिन शुभ शाम पेश किया जा रहा है। यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और मैं रहूँगा करीबन 3 बजे तक, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे और शाम के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस हाल में भी होंगे, और ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, कहीं भी होंगे, आपका हृदय से स्वागत है। आपको भी एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है।

फिल्म है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया जा रहा है, खयाम के साज पर 1966 का ये फिल्म है निगेटिव शस्त्र। शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखा होगा, लेकिन फिल्म जहाँ तक मेरा ख्याल है 99% लोग इसे अवश्य देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म का नाम है आखिरी खत।

वाह क्या बात है, आपने तो सुने हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत की आग दोनों तरफ से लगी हुई थी और एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी आपको सुनाए हैं। फिल्म देखते हैं सीता और गीता में से 1972 का ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। देखते हैं तो सुतरमेर के रहने वाली मीला जी और भैया मंसूर जी, मीला जी और भैया मंसूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ दिन आप सबको पेश हो। और ये भी देख रहे हैं भैया चांद रघुनाथ अल्फरांदर के रहने वाला है और उनकी धर्मपत्नी खिसला, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं।

फिल्म सावन के घटा में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए है निकिता सेसेंस का ये गीत ओपन नैयर के साज पर आयशा जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप अवश्य। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो लीजिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत, देखते हैं, हाँ एवरग्रीन किशोर कुमार। एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर मेरे जीवन साथी में से निकाल कर

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म मेरे जीवन साथी में से निकाल कर ये गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो शिक्की शाम के कार्यक्रम में। और देखते हैं उतरख के रहने वाली बेया जी। जी हाँ, उतरख के रहने वाली बेया जी भी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेया जी आपका दोनाथ सिंह हम लोगों को मिला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। जो दोनाथ सिंह आपने दी तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को मिल गया। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बस्तूर दिरक्सी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये दोनाथ सिंह के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं मेहदी हसन का ये गीत। जी हाँ, मेहदी हसन का ये गीत बहुत पुरानी गीत है, लेकिन सुन लीजिए शाम के कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगेगा।

मेहदी हसन कार्यक्रम में आपको सुनाए ये शानदार द्वैत और हमने पेश की फुरफावन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, क्या ख्याल है रफ़ी साहब का ये गीत, देखते हैं ओपन एयर के साथ। पर इस गीत पर एक कहानी है, पर नहीं के है, इस गीत की एक कहानी है। दरअसल में जब रिकॉर्डिंग होने वाला था तो रफ़ी साहब के सभी साजिंदे वहाँ मौजूद थे, आज हाजिर थे, लेकिन जो तुरम वाले थे और ढोल वाले थे वे लोग अभी नहीं आए थे। तो ओपी नैयर ने कुछ देर इंतज़ार किया, 10-15 मिनट, लेकिन आधे घंटा बाद जब ये लोग नहीं आए और उस समय तो टेलीफोन था ही नहीं, मोबाइल, अरे टेलीफोन था लेकिन मोबाइल नहीं था, तो तार करके ओपी नैयर साहब को बता भी नहीं सकते थे। तो ओपी नैयर गुस्सा में आकर दरवाज़ा बंद कर दी स्टूडियो के और रफ़ी साहब से कह दिया और आशा जी से और सभी साजिंदे से कि चलो ये गीत हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कोई ड्रम कोई कुछ नहीं रहेगा, कोई तव ढोल तबला नहीं रहेगा। तो ये गीत आप ध्यान से सुनिए किस तरह से ये इस गीत के धुन को और उसके ताल को बिल्कुल बदल दिया गया और रिकॉर्डिंग किया गया बगैर ढोल तबला।

फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत है। जी हाँ, निगदिन तुई सस्तक का ओपी नैयर के साज पर। कहानी तो हमने बता चुके हैं, अब उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात भी है कि हम भी सोच रहे हैं यहाँ बैठकर, अगर इसमें ढोल तबला बजता जिसका मास्टर है ओपी नैयर, तो कैसा रिकॉर्डिंग रहता। बहरहाल ये भी कम नहीं है। बहुत प्यारा गीत आशा जी और रफ़ी साहब ने मिल के पेश किए, आपको सुनाएं।

सुखविंदर सिंह आपको सुनाइए लगन लगी। सुखविंदर सिंह एक ऐसा गायक है जो एक गीत में 5 या 7 धुन बदल सकता है, और उसकी आवाज़ तो वह क्या कहना है। ये बहुत से राग एक गीत में गा सकता है, और म्यूजिक डायरेक्टर को ये बात पता है, इसीलिए कभी कभी इन्हें एक ऐसा गीत देते हैं कि 3 या 4 धुनें उसमें हो और 3-4 राग हो, फिर भी वो बहुत मज़े से गा लेता है सुखविंदर सिंह। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और आपको ये सुना रहे हैं

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, लता जी आओ मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह फिल्म लावारिस में से निकालकर निगितनी सैफ अंतक 1970 का यह गीत है, उत्तम जगदीश के साज पर हमने पेश किए फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। प्लेयर में हमने एक गीत रख के एक धमाकेदार की थी। ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन चलो सुनते हैं ये शानदार गीत है।

सैया ले गई जाम लिजिया मेरी पहली नज़र, और यानी पहली नज़र में जिया ले गई उनके। लेकिन अजीब है कि प्लेयर पर लिखा है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़, लेकिन इसमें तो रफ़ी साहब के कोई दरस नहीं है। प्रेम धामन की लिखी हुई गीत है, फिल्म एक दो फूल, एक फूल दो माली, नीक तीन नीक न शस्त का ये गीत है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल कुछ गलती हुआ होगा। बहरहाल आशा जी आपको सुनाइए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है। ये गीत की भी एक कहानी है। उदित नारायण ढूंढ रहा था बॉलीवुड में यानी फिल्म इंडस्ट्री में आने को, तो ये तो आपको पता है, जाहिर है कि जो लोग आते हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो पापड़ तो बहुत बेले। लेकिन एक दिन हुआ कि उदित नारायण के दरवाजे पर जहाँ पर रहता था एक गाड़ी आकर खड़ा हुआ, और एक शख्स उसमें से निकला, कहा उदित तुम्हारा नाम उदित नारायण है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा डायरेक्टर आपको बुलाया है, किस लिए? आपको मौका मिलेगा गाने को। तो उदित नारायण बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, पहुंच गया, एक घंटा पहले पहुंच गया वहाँ। तो वहाँ किसके साथ उन्हें गाना था? मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। यहाँ तो थोड़ा डर गया था। तो रफ़ी साहब ने उन्हें देखा, कहा बेटे डरना मत, ना जवान था। तो रफ़ी साहब ने कहा बेटे डरना मत, बस बेनिधड़क होकर गा, बेधड़क होकर गा। और एक बात उन्होंने उदित नारायण से कहा, रफ़ी साहब ने कहा कि तुम गिटार बजाते हो? तो उदित नारायण कहा हाँ हम गिटार बजाते हैं। बोले तुम गिटार बजाते हुए बहुत अच्छा लगोगे, एक दिन गिटार बजाना कभी स्टेज पर। और ये बात उदित नारायण को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ये पहला गीत था उदित नारायण ने रवि साहब के साथ गाया, इस तरह से हम पेश कर रहे हैं।

अल्लाह मेहरबान वे वे अल्लाह कुर्बान वे वे खान को भी।

हाँ जी, उदित नारायण और रफ़ी साहब के ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं, जबकि उदित नारायण पहली बार रफ़ी साहब के साथ आवाज़ मिलाकर ये गीत को गाए हैं। घड़ी पे देखूं तो धीरे धीरे समय हो रहा है विज्ञापन की, तो चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद फिर बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ।

हाँ, फिल्म त्रिशूल तो आप देखे होंगे, खय्याम के साज पर, ये द्वैत लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। प्लेयर में हमने एक गीत रखे हैं। जी हाँ, गीत आपको मालूम है, सुरिनाम में आप ये फिल्म देखे, घर पर भी देखे होंगे, थिएटर में भी देखे होंगे, फिल्म गुमराह। फिल्म गुमराह का ये गीत हम आपको सुनाने वाले हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में। ये गीत मुझे याद है, सुरिनाम में जब महेंद्र कपूर जी आए थे, बरस मुझे इस वक्त याद नहीं है, बहरहाल तियात्र स्थान में उन्होंने शो दी और ये गीत को उन्होंने गाए, लेकिन एक दो लाइन नेखर एंगल्स में गाए हैं। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार है, उन्होंने गाया, मुझे याद है। लेकिन उस समय मेरे पास कैसेट नहीं था कि हम ले लेते हैं, शायद किसी के पास होगा उनकी आवाज़। इन न विनती, इन न कोरू विनती, मिलो भी ये कारियो, महेंद्र कपूर ने गाए थे, लेकिन मेरे पास नहीं है।

महेंद्र कपूर जी और आशा जी ये दोनों मिलके आपको सुनाएं और गीत जिस समय चल रहा है फिल्म गुमराह का है रवि के साज पर गीत जिस समय चल रहा है तो एक टुकड़ा मुझे और याद आया कोंग नामी नामी मी लो भी ये कार्योल यू लेकिन अफसोस मेरे पास कैसेट नहीं था वरना हम ले लेते उनका गाना जो उन्होंने स्टार में गाए थे। बहरहाल चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं जी हाँ और वो ये है इस तरह से

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है। सुमन कल्याणपुर और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म को बड़ा गुगल में से हमने निकाल कर आपको सुनाए हैं। जबकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेन में हमने ये गीत रखे हैं, जी हाँ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाल कर, हाँ, प्रोफेसर में से निकाल कर आ रहा है ये गीत। इस तरह से सुनते हैं।

आवाज देखे हमें तुम बुलाओ। जी हाँ, लता जी और रफ़ी साहब का ये गीत हम आपको सुनाए शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म प्रोफेसर में निकितिन त्वेन शस्त्र का ये गीत है। और मैं बताने वाला था ये कि ये गीत जब लिखी गई तो शमी कपूर का एतराज़ था कि इसमें मेरी आवाज़ बहुत कम है, यानी रफ़ी की आवाज़ बहुत कम है, क्या किया जाए। और देखा जाए तो सिर्फ एन दर्द शमी कपूर ने कहा, सिर्फ एक तिहाई यानी एन दर्द मैं दिखता हूँ और रफ़ी साहब के गाने हैं। तो बाद में थोड़ा सा और रखा गया, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा शमी कपूर से, शमी कपूर, शमी जी डरिए मत, एक तिहाई हुआ तो क्या हुआ, और गाना तो रिकॉर्डिंग होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस समय जिस टाइम ये गीत रिकॉर्ड किया गया रफ़ी साहब और लता जी की, तो लोग सुनते रह गए हैं कि वाह क्या बात है। चाहे एक ही तिहाई शमी कपूर दिखा इस शूटिंग में और फिल्म में, लेकिन गाना बहुत अव्वल दर्जे का है। और ये गीत हम आपको सुनाएं।

दीवाना करके छोड़ेंगे, ये गीत आपको सुनाया गया। जी हाँ, इस तरह से हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और ये है, जी हाँ, उदित नारायण आपको सुना रहा है।

सूर्य स्वाधिकर, हाँ शाम के प्रोग्राम में सूर्य स्वाधिकर आपको सुनाए हैं, ये प्यारा गीत हमने पेश किए है, जबकि आप भी हैं, मैं भी सुन रहा हूँ और हम इस चला भी रहा हूँ। और याद रहे मीला जी सूत्रमेर के रहने वाली, भैया मंसूर और चांद रघुनाथ जी, उनकी धर्मपत्नी खिसला और बेया इधर के रहने वाले, ये लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या ख्याल है जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, ये टाइटल सॉन्ग है एवरग्रीन किशोर कुमार का, निकितिन सैफ अंतक का, और आगे नहीं बताऊँगा, टाइटल सॉन्ग हो तो फिल्म के नाम भी आपको पता चल जाएगा।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा, हाँ एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया ये टाइटल सॉन्ग निगदी सेफन तक का ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। तो लीजिए अगला गीत हम चला आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी निकिता शस्त्र को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी इच्छाएँ उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी निगती शस्त्र 1966 का ये गीत ओपन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है। वर्णन लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

मैं ते मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है। और ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं थी फिर ऐसे 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं। आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुई सैफ तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है। जी हाँ, अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है, देखते हैं भैया चांद रंग बनाते गीत सुनना चाहता है तो लीजिए, वो गीत हम आपको सुनाते हैं।

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथिली मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत चला अल्फन अंदर इनके रहने वाला श्रीमान चांद्र घुनाथ और खिसला के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से स्थ आशा जी और जी लता आशा और लता मिलके गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगती निग्न से स्थ 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, किया शंकर जय किशन इस तरह से।

0: मगर क्यों?
1: आजादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना।

हम तुम्हारे हैं।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए लेकिन करना पड़ेगा ज़रूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाए हैं निगेती सैफ अंतह का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ इस तरह से।

0: कहो जी कहो, एक बात कहूँ, ये द्वैत सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए सुनते हैं राज कपूर और विजयंती माला का ये दृश्य। ये दृश्य देखने लायक है, आप देखे होंगे तो सोचिए। हाँ जरूर, अवश्य सोचिए इस गीत के बारे में जो मैं चलाने वाला हूँ। इस तरह से आ रहा
1: है। हाँ बुढ़ा,

मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लता जी आपको सुनाए शंकर जय किशन के साज पर ये गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है?

0: आंखों में भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।
2: जिया ओ जिया रे जिया कुछ बोल दो। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की।
3: पैसा
2: पैसा का कहानी आखिर में सुन लो।

यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश किया। आशा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम में तार भी किए हैं या ऐप किए हैं मीला जी और जनाब मंसूर जी सुतरमेर के रहने वाला, और भैया चाँ रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला भी, और साथ ही साथ इतरह के रहने वाले बिया जी। इन सबको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। कार्यक्रम सुने और बताएं भी कि वे लोग सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा साथ भी था यहाँ भैया मीनू भगवान दीन, और भैया मीनू भगवान दीन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरा साथ दिया। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, जी हाँ, सौंदा गीत गज़ल के कार्यक्रम में। आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ हो, न्यूज़ के बाद बाकी का कार्यक्रम हमारे सहयोगी आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिल रहे हैं सोमवार को यानी रविवार को।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बस ही हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिलके सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज़ में दोस्तों। और अगर रफ़ी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तख का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। म्यूजिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों, शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है, पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी मैं मिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोए पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मेंस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

जिंदगी में और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुए के भैया ये हंसते हुए सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों और दिल। वैसे मैं से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते है। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस, पक्का।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतिया और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपके सिवा कोई

और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल हेल्थ दोस्तों बहुत लंबा होता है, कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं, वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं, जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए। किसी ने पूछा, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है। और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि, बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था। हमारे प्यारे दोस्तों, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे। हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को, उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया, जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 7 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूरो 25 देन। हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं, मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है, फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई, तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

0: और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे। दोस्तों प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा।
1: सुनो वालों, बृहस्पतिवार की रात्रि है और 2 मिनट बाकी है 6 बजने में। आज 21 मई 2020।
0: एक रिश्ता सी समी
1: और आज की रात्रि अभी कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
0: हाँ जी, चाहे
1: स्टूडियो भरा भरा से है,
0: एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब फिर एक बार कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर यहाँ उपस्थित है। आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं भारत से अनुराधा चंदर जी, हमारे मास्टर जी राजेंद्र सिंह जी जो अपना संदेश सुनाएंगे, मीनाक्षी जी जो यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है, और पनेल के पीछे बैठे हुए शांता खेमई जी और मैं आपका सेवक संजय, और साथ में बबली आसरा जी भी स्टूडियो में उपस्थित है। तो सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम शांता जी से कहेंगे कि शांता जी अपना एंट्री लेकर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: आप तो परिचय करा दिया हम सभी का। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।

0: का। अभी कुछ ही समय पहले नेदरलैंड्स में आई हूँ। ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
1: सभी सुनने वालों का मेरी ओर से नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और एक मंगलमय हो।

0: सुनो वालों, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले शांता जी, क्यों ना वही गीत चलाया जाए कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, क्योंकि मास्टर जी, मास्टर राजेंद्र जी का बस यही था कि पहले राम जी का नाम लिया जाए, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन जो उदास बैठे हुए हैं उनकर उदासीपन भी चले जाए, ऐसा है कि नहीं मीनाक्षी जी?
1: हाँ बिल्कुल, आपने सच कहा,
2: राम जी का स्मरण मात्र ही सारी परेशानियों का हल है।

0: सुनो वालो, हमारे मास्टर जी मास्टर राजेंद्र जी भी कनेक्ट हो गए हैं और भारत से। तो मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और आपका अभी शांता जी कौन सा बटन घुमाने वाला है ये नहीं पता है, आप सुनाई नहीं दे रहा है मास्टर जी।
1: हाँ, अभी हम बैठे हुए हैं

0: और हमारे साथ जुड़ गए हैं मास्टर जी। तो मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत करते हुए, आप इस समय ऑनलाइन हो चुके हैं मेरे ख्याल से।
1: जी, हम अभी ऑनलाइन हो चुके हैं और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद इस बार कार्यक्रम करने का मौका मिला और फाउन हिंदुस्तानी के श्रोता हम लोगों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कि जैसे कि अभी हम बोध गया में हैं और बोध गया जो है भगवान बुद्ध की नगरी है। यहाँ पे साईं माँ आ चुकी हैं और यहाँ पे 30 कंट्री से अधिक लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनके बारे में आज हम लोग आज बातचीत रखेंगे और साईं माँ क्या कहती है, बौद्ध क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या कहता है और सब लोग क्या कहते हैं। इसमें धर्म का कहीं बात ही नहीं है, इसमें सीधा ज्ञान की बात है। तो सीधा हम लोग आज ज्ञान की चर्चा करेंगे और किस उद्देश्य से क्या उन्होंने बोला, उस पे लोगों ने क्या अमल किया।

0: क्या सुनाने वाले हैं। तो राजेंद्र जी आप सुनते रहना
1: जी।
0: जोर तोर से शांता जी एक सुंदर सा गीत खोज चुके हैं और चलाने वाले हैं।

0: तो राजेंद्र जी, आप अपना संदेश हम सबके सुनाइए।
1: लाइव में आ गए दोबारा?
0: जी जी, एकदम आप लाइन में हैं।
1: तो जैसे कि हम आज चित कर रहे हैं सभी श्रोताओं से भगवान बुद्ध के बारे में, क्योंकि उनका इस समय हम लोग भगवान बुद्ध की नगरी में पहुंच चुके हैं, और जो बुद्ध हैं वो क्या हमें शिक्षा देते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे थोड़ा सा। फिर अपने सनातन के बारे में, बुद्ध के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बुद्ध की बात है क्योंकि उनका अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग 30 कंट्री से अधिक लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया में। एक यहाँ पे वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वो 6 वर्ष तक रहे और यहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा एक वृक्ष है। बुद्ध कहते हैं, उनके सबसे जीवन परिचय बताएंगे। उनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम, बाद में गौतम बुद्ध हो गए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी 563 से पहले ईसा पूर्व कहते हैं, लुम्बिनी में, जो भी नेपाल में है वहां पे इनका जन्म हुआ। पिता इनके राजा सुदोधन, सांख्य गणराजा के राजा थे, और माता रानी महामाया। अन्य नाम है इनके सांख्य मुनि, तथागत, भगवान बुद्ध, जो अलग अलग नामों से बाद में जाने गए। कुछ इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा, इसमें वैराग्य हुआ। जब उन्होंने बचपन में बूढ़े आदमी को देखा, बीमार को देखा, एक मृत्यु देखी, तो इन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हमारा भी होगा। इसी उस तो देख

0: सन्यासी हो गए। और फिर वह महाभिनिष्क्रमणा 29 वर्ष की आयु में घर परिवार को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। जब 29 वर्ष के थे जब इन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में चले गए। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, जहाँ पे हम अभी लोग हैं, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठे, वही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। अभी वो वृक्ष अभी भी है, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष है। उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए। इन्होंने जो मुख्य शिक्षाएं दी है, चार आर्य सत्य है। दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है, यानी दुख निरोध, तृष्णा के अंत से दुख का अंत होता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? आठ है, सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टि, सही संकल्प, जो हम लोग आठ मार्ग से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, वो भगवान बुद्ध ने बताया है। क्या क्या है? सही दृष्टि हो, सही संकल्प हो, सही वाणी हो, और सही कर्मात हो यानी कर्म सही हो, सही आचरण हो, सही आजीविका हो, सही प्रयास हो, सही जागरूकता हो, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये सब चीज अगर सही हो तो हम लोग मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। फिर इन्होंने पंचशील की बात करी। पांच शील क्या है? बौद्ध अनुयायियों के लिए पांच नियम हैं, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना, ये पंचशील है। फिर है इनके महानिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में 487 ईसा पूर्व कुशीनगर में देह त्याग दिया। और महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से बने? लुम्बिनी, लुम्बिनी जैन का जन्म स्थान है, बोध गया जैन को ज्ञान प्राप्ति हुई, आप अभी यही हैं, और फिर सारनाथ पहला उद्देश्य धर्म चक्र परिवर्तन, और कुशीनगर महापरिनिर्वाण, जैन की मृत्यु हुई। बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भवा, ये सबसे बड़ी शिक्षा है, आपो दीपो भवा, इसका मतलब हुआ आप अपने दीपक स्वयं बनो, यानी दूसरे के ऊपर कभी निर्भर न रहो, आप स्वयं अपने दीपक बनो, यानी आप अपने हाथ में दीपक जलाओ और अंधेरे में भी चल सकते हो, और कब सोचोगे कि कोई आएगा टॉर्च लेके तब हम जाएंगे तो कभी ना हो सके। ये बोध बुद्ध की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और बोध गया में महाबोधि मंदिर के बारे में कुछ अगर आप और लोग बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ है, क्या है, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। महत्व है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बौद्ध धर्म के चार सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं 531 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने 3 शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया। वर्तमान मंदिर गुप्त काल में 5वीं-6वीं शताब्दी का है। विशेषतः ये भारत में ईंट से बना सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है जो अभी भी खड़ा है। मंदिर की बनावट 50 मीटर ऊंची है, 170 फीट ऊंचा पिरामिड आकार का शिखर है, और शिखर के ऊपर सोने के छत्र लगे हैं। 2013 में थाईलैंड के राजा ने 289 किलो सोना चढ़ाया था। मुख्य मूर्ति अंदर पीले बलुआ पत्थर की बुद्ध की मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और इसके कॉम्प्लेक्स में अंदर क्या क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़, असली पेड़ की शाखा श्रीलंका ले गई गई थी, जो असली पेड़ की शाखा श्रीलंका ले जाई गई थी ये उसी का वंशज है। और वज्रासन, हीरे का सिंहासन है, पत्थर द्वारा जहाँ बुद्ध बैठकर ध्यान करते थे और पवित्र स्थल है यहाँ पे, ज्ञान के बाद बुद्ध ने 7 हफ्ते यहाँ बिताए, उन सभी जगहों के निशान हैं। कमल सरोवर है 7वां पवित्र स्थान, परिसर के बाहर दक्षिण में है। यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे से रात बजे 9 बजे सुबह 5 से रात 9 बजे तक प्रवेश लोगों को मिलता है। सबसे अच्छा समय यहाँ पे आने के लिए अक्टूबर से फरवरी रहता है। नियम है, जूता चप्पल बाहर, मोबाइल कैमरा सब प्रतिबंध है। सादे कपड़े में लोग आते हैं और इसमें बैठते हैं। रात में मंदिर की लाइटिंग और सुबह 5:30 की मंगल आरती बहुत शक्ति एवं शांतिदायक होती है। परिसर जमीन में 5 मीटर नीचे है, अंदर जो 5 मीटर अंदर है जमीन के, अंदर जाते ही अलग शांति महसूस होती है। आप महाबोध, आप जो महाबोधि, महाबोधि जिनको कहते हैं, जो बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हुए हैं और उनमें जो मुख्य शिष्य थे वो उनके साथ ही रहते थे हर समय। तो बुद्ध के 4 स्तंभ भी हैं। बुद्ध के जो 4 स्तंभ ये हैं, बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य है। अगर किसी के जीवन में दुख नहीं है तो फिर वो कैसे समझेगा। और फिर वो कहते हैं कि दुख लालसा के कारण होता है। दुख किस कारण होता है? लालसा, लालच के कारण। फिर कहते हैं यदि हम लालच त्याग देते हैं तो दुख से मुक्त हो सकते हैं, और जब दुख से मुक्त हो गए तभी हमें निर्वाण हो सकता है। ये 4 शिक्षाएं हैं बुद्ध की। क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा सुना के और फिर इसके आगे बढ़े।
1: बिल्कुल राजेंद्र जी, शांता जी तो मैं देख रहा हूँ तैयार हो गया, अपना नखमा पिटाड़ा से छोड़ चुके हैं। पर अभी आपने कहा 30 देश के लोग वहाँ उपस्थित हो गए, तो ये बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता ना?
0: हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है।
1: तो यहाँ तो अब देखा जाए कि ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है भारत से, और हम लोग इसके बारे में कम जानते हैं शायद, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा जो होता है वो एक दिवस है जो सारी भारतीय वासियों उस दिन छुट्टी होते हैं ना?
0: जी जी जी हाँ, उस दिन छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की,
1: सभी को, सभी स्कूलों को, सभी पे,
0: सब स्कूलों को, सब ऑफिसों को पूरी तरह से बंद रहता है, और लोग उस दिन ज्यादा से ज्यादा करके ध्यान करते हैं। और भगवान बुद्ध ने ध्यान ध्यान ध्यान
1: उस दिन को ज्यादा तादाद में ध्यान करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए मास्टर जी मीनाक्षी भी जो स्टूडियो में है, तो मीनाक्षी जी आप भी काफी सालों बच्चों को पढ़ाए, पर इस पे आप क्या दृष्टांत छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी मास्टर जी का संदेश पूरा नहीं हुआ है और गीत की ओर हम लोग बढ़ने हैं, पर आप लोग फ्री होते थे स्कूल से?
2: हाँ, हमारी तो हॉलीडे होती थी उस दिन, और वैसे मैं एक हमारे ये जो बुद्धिस्ट हर दिल्ली में हर कॉलोनी में ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें हम लोग चैंटिंग करते थे बुद्ध के नाम की। और वैसे भी ये नहीं कि छुट्टी वाले दिन ही, तो ये तो हमारा एक नेचुरल कोर्स सिस्टम था कि हम सारे एक ग्रुप इकट्ठा होके हम चैंटिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध जो भगवान ने जिस धर्म को स्थापित किया गया किया था, तो उस धर्म के अनुयायी मैं समझती हूँ कि बहुत है दिल्ली में भी, जो कि उनके नाम की चैंटिंग करते हैं और नए नए मेंबर्स उसमें बनाना चाहते हैं और वो भी उसमें चैंटिंग करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा सा वातावरण होता है, और सबको चैंटिंग करने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपका जीवन में अनुभव क्या रहा, इस चैंटिंग का आपको क्या फ़ायदा मिला। तो सब लोग अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको लिख कर लाते हैं और सबके सामने पढ़ते हैं। तो ये भी ये एक बहुत बड़ा धर्म के रूप में तो था ही, और भी विकसित हो रहा है।
1: बस बड़ा अच्छा लग रहा है ये इतने ज्ञान के बाद सुनने को। मास्टर जी क्यों ना एक गीत के ओर बढ़ते हैं, फिर इस पे थोड़ा सा और चर्चा किया जाए।
0: जरूर जरूर जरूर।

0: सुनने वालों, आज का कार्यक्रम में और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हमारे मास्टर जी जो काफी संदेश रख चुके हैं और भी संदेश रखने वाले हैं, तो मास्टर जी और कौन सा संदेश आप रखने वाले हैं?
1: देखिए, बुद्ध के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो एक राजा के लड़के थे और उन्होंने बचपन में ही सब छोड़ के और शादी किया। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ उन्होंने उसको भी छोड़ के और चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने बोला कि जब मनुष्य बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और मर भी जाता है, तो फिर मुझे भी मरना होगा, ये भी करना होगा। उन्होंने क्यों ना निर्वाण की सत्य की खोज में चले जाए, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और वो चले गए जंगल की तरफ। जब वो गए तो बोध वृक्ष, एक बोध गया में उसके नीचे 6 बरस तक बैठे रहे और एक तृण, तृण समझते हैं एक दाना के पर और कम छोटा, उतना ही भोजन लेते थे क्योंकि प्राण रहे बस उतना ही वो भोजन करते थे। और 6 बरस तक एक ही मुद्रा में बैठे रहे, न ठंड का असर, न गर्मी का असर, न किसी भी चीज का कोई असर नहीं, कोई भोजन का नहीं, कोई कपड़ा का नहीं। जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 6 बरस के बाद। तो जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी दिन चंद्रमा पूर्ण था, यानी फुल मून। तो वो किसी एक, जब वो कुछ नहीं लेते थे तो किसी कोई गांव की एक लड़की थी, उन्होंने कुछ वो मांगा था, इच्छा पूर्ति का वरदान मांगा होगा। तो उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक थाली, भोजन की खीर की थाली ला के चढ़ाई। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको भी उसी दिन उन्होंने बोला कि अब मैं तो कुछ लेता नहीं था और आज ना भोजन आ गया तो लाओ इसको, हम ही ले लेते हैं। उसी दिन से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर कोई नियम और उसमें नहीं रहे, एकदम नियम से भी ऊपर हो गए। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति नियम में नहीं बनता, नियम उनके अनुसार चलने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो बुद्ध की प्रमुख विशेषता ये है कि उन्होंने बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध यानी ज्ञान, ज्ञान की शरण में जाता हूँ। और यह पाली भाषा का वाक्य है। पाली भाषा आप जानते होंगे कि संस्कृत से पहले पाली बोली जाती थी और भगवान बुद्ध के प्रति समर्पण शांति, ज्ञान और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प दर्शाता है। तो
0: मास्टर जी, आपने कहा कि पाली भाषा, ये संस्कृत तो सबसे पुराना भाषा ना?
1: नहीं, संस्कृत से जो पहले बोली जाती थी वो पाली बोली जाती थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी।
0: Okay.
1: संस्कृत सबसे पुराना भाषा रहा है, लेकिन जो मनुष्यों की भाषा थी पहले, इसके बाद संस्कृत भी हुई और फिर संस्कृत के बाद संस्कृत कम हो गई, हिंदी और अलग अलग भाषाएं, अंग्रेजी और बहुत सारी हो गई, लेकिन बोली जाने वाले में जो बोलचाल की भाषा थी वो पहले पाली थी।
0: ऐसा?
1: हाँ।
0: अच्छा, ये तो मैं पहला बार सुना।
1: जी
0: अच्छा भाई, इसी कारण ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम बनाया जाता है ना मास्टर जी, क्योंकि कितने बात है जो अपने जीवन में कभी नहीं सुने थे और हमारे जो सुनने वालों भी इस बात को सुन करके शायद आश्चर्य होते होंगे कि पाली भाषा एक कितना पुराना भाषा है।
1: हाँ, जो लोग संस्कृत के विद्वान हैं वो लोग पाली भाषा जरूर समझते हैं कि भाई संस्कृत से पहले बोलचाल में कौन सी मनुष्यों की भाषा थी, क्योंकि संस्कृत तो देवताओं की भाषा रही है सतयुग से अभी तक, और मनुष्यों की भाषा धीरे धीरे बदलती गई। पहले कुछ हुई, पहले जो ज्यादा बोलचाल में वही है वही भाषा बन जाती है और वही आगे के लोग भी सीखे।
0: ऐसा तो देखा जाए कि भारत में भी अब नोट पे भी 26 भाषा जो है उस पे लिखा गया है, तो पर कहते कि भारत में कितने 100 प्रकार के भाषा है ना?
1: हाँ, भारत में अलग अलग जैसे जिस प्रकार से क्षेत्र हैं उस हिसाब से भाषा है। जैसे उत्तर भारत है वहाँ की अलग है, जैसे बिहार में है वहाँ की भाषा अलग है, और जो आप हम लोग सरनामी भाषा बोलते हैं वो उस सरनामी भाषा है वो बिहार की भाषा से मिलती हुई है।
0: राजेंद्र जी, यहाँ बैठे हुए स्टूडियो तो भरा हुआ है, पर बबली जी आप कौन भाषा से परिचय है, कौन भाषा आप अपने घर से बात करते थे?
2: हमारी भाषा तो पंजाबी, पंजाबी भाषा में बात करते थे हम।
0: तो पंजाबी भाषा से आप है?
2: हाँ।
0: और बात करते थे, पर मीनाक्षी जी बैठे हुए हैं तो पूछते, मीनाक्षी जी आप जरा कुछ अपने भाषा के बारे में बताइए।
3: हमारी तो जो मुख्य भाषा घर में आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हिंदी ही रही है, लेकिन क्योंकि मैं तो जैसे कि हायर एजुकेशन में भी थी तो उस वक्त हमें इंग्लिश भी काफ़ी हम प्रयोग करते थे, तो ये मेरे जीवन में तो इन दो भाषाओं का ही ज़्यादा जोर रहा है।
0: पर जो स्थान से आप बिलोंग होते हैं वहाँ का भाषा क्या है?
3: मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और वहाँ की भाषा राजस्थानी है।
0: राजस्थानी है।
3: जी जी
0: राजेंद्र जी, और जैसे कि आप सुना रहे हैं, आप तो हम लोग को यहाँ पर भी संस्कृत का लेसन दिए है राजेंद्र जी, कितने लोगों के हॉलैंड में, और कुछ न कुछ हम लोग सीखे हैं। पर राजेंद्र जी क्यों ना एक और पिटारा से निकाला हुआ कुछ सुना दिया जाए शांता जी के ओर से?
1: जरूर जरूर, एक पिटारा से निकाला हुआ एक और नगमा सुनाया जाए, इसके बाद हम थोड़ा फिर भगवान बुद्ध के बारे में बात करेंगे और इसके बाद खबर का समय भी हो जाएगा।
0: तो शांता जी कुछ सुना रहे हैं हम लोग के।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने सुने वालों, और बुद्ध जो बुद्ध पूर्णिमा के अंतर्गत आज हमारे मास्टर जी हम सबको सुना रहे हैं, कितने संदेश जो रख चुके हैं और अभी भी और भी संदेश रखने वाले हैं। तो मास्टर जी आप अपना संदेश को हम सबको लिए रखिए।
1: जैसा कि सुनने वालों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में जो हमारा प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, यानी कुछ नया सीखने को मिलना, वही इसमें मिलता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मन इसका अर्थ क्या है पूर्ण रूप से, वो तीन चार चीजें ज्यादा बोलते थे। उनका अर्थ इस प्रकार से था, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। फिर बोलते थे कि धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म यानी शिक्षा की शरण में जाता हूँ। फिर बोलते थे संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ यानी समुदाय की शरण में जाता हूँ। और फिर बोलते थे पुनरावृत्ति, द्वितीय और तृतीय बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दूसरी बार मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ और दूसरी बार मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, दो तीन बार ऐसा वो बोलते थे। और फिर ततीयमी बुद्धम शरणम गच्छामि, तीसरी बार मैं फिर बुद्ध की शरण में जाता हूँ, ततीयमी बोलते हैं। तो ऐसे बुद्ध ने बहुत अच्छे, जो बुद्ध का मेन कार्य है वो उन्होंने, बुद्ध के आज 50,000 कम से कम मानने वाले बुद्ध धर्म को, 50 लाख लोग, लाख नहीं 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग यानी 500 मिलियन बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। और जब बुद्ध को इतने मानने वाले लोग हैं तो उनके मंदिर, उनके अलग अलग जगह पे, यहाँ पे जो बोध गया है बिहार में, यहाँ पे सब देशों के जितने देशों के मानने वाले हैं उन लोगों ने अपने यहाँ पे मंदिर बनवाए हैं, यहाँ पे वो लोग आते हैं। अभी बहुत यहाँ पे भीड़ है, अलग अलग हमारे भी 30 देशों से लोग आए हैं, सनातनी है सारे, लेकिन बुद्ध का जो ध्यान की बात करते हैं उसको मानने के लिए और शांति के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। इनका मूल मंत्र था कि आप आओ, देखो, जानो और फिर मानो। मतलब वो नहीं कहते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, जैसे कोई लोग कहते हैं आओ ये करो वो करो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहते थे। बुद्ध कहते थे कि आओ, पहले आओ, पहला स्टेप है आओ, फिर देखो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर जानो, उस बात को समझो, फिर मानो। तो इसी प्रकार से लोग आए, देखे, जाने और फिर माने। बुद्ध ध्यान के बारे में जो बात करते थे, वो कहते थे कि कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई तंत्र की जरूरत नहीं किसी भी चीज की, आप केवल एक स्थान पर बैठ जाओ, कमर सीधी होनी चाहिए रीढ़ की, गहरा लंबा सांस लो और उसी सांस को देखो जिसको आप ले रहे हो, कैसे ले रहे हो सांस को और कैसे छोड़ रहे हो। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो हल्की सी ठंडक नासिका में जाएगी और जब छोड़ रहे हैं तो हल्की सी गर्माहट नासिका से बाहर आएगी, क्योंकि जब हमने सांस लिया वो सांस हमारे अंदर गया, अंदर का हमारा टेम्परेचर 37.2 डिग्री होता है, तो उसी टेम्परेचर के अनुसार जो सांस बाहर आएगी उतनी गर्म रहेगी और जो बाहर से अंदर सांस जाएगी उतनी ठंडी रहेगी जितना बाहर का टेम्परेचर है। तो बुद्ध कहते थे कि अपनी सांस को आप कैसे ले रहे हो और कैसे छोड़ रहे हो, उसी सांस को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, आप धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे और जब शांत हो जाएंगे तो एक गहराई में जाएंगे और अच्छा अनुभव होने लगेगा। जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा जो सारा भ्रम होता है, सारा भ्रम हमारे दिमाग में होता है, उससे हल्का सा लिक्विड निकलता है और जब वो निकलता है हल्का सा अंदर ही अंदर, तो हमें अच्छा लगने लगता है, वही हमारे अच्छे भाव होते हैं। और केवल एक ही तरीका है उसका, हम लोग शांत हो जाएं, एक स्थान पे बैठें और गहरे लंबे सांस लें, अपनी सांसों को देखें और जब देखें तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यही बुद्ध की जो है हमें सबसे बड़ी शिक्षा है कि किस प्रकार से हमको शांत रहना है और किस प्रकार से हमें अपना स्वयं आपो दीपो भव, स्वयं अपना उद्धार करना है, न कि कोई हमारा करेगा तो हमारा होगा, तो कोई हमारा कुछ करेगा तब हमारा होगा, ऐसा नहीं। आपो दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो और अपना उद्धार आप स्वयं कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो इसी शिक्षा को हम लोग चाहते हैं कि लोग भी अपनाएं और जो लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता है वो लोग अगर इस टेक्निक को अपनाएं। टेक्निक क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गांधी सेंटर में जाके वहां पे सीखें और इसके बाद ध्यान करें। ध्यान वहां पे अभी योगा टीचर गणेश है, बड़ा अच्छा है, वो बताएगा कैसे करना है और धीरे धीरे करके हम शांत हो जाएं और निरोगी हो जाएं। निरोगी यानी अगर किसी को कोई रोग है तो दूर हो जाएगा और मन अगर चंचल है तो ध्यान प्राणायाम से शांत हो जाएगा और ध्यान से और गहराई में चले जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो सब प्रकार से हम मुक्त होके एक सुख शांति का जीवन अपना सकते हैं, यही बुद्ध हमको सिखाते हैं और इसी को सबको सिखाया। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े राजा लोग अपना राजपाट त्याग के और बुद्ध की शरण में हो गए थे। एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था जो कि को कहता था कि जब तक मैं 100 उंगली गले में नहीं पहनूंगा तब तक मैं वो नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। तो जो भी जंगल में जाता था, बबली जी ने अंगुलीमाल की कहानी जरूर सुनी होगी, उनका एक चैप्टर है पांचवी चौथी क्लास में डाकू अंगुलीमाल के नाम से।
2: हाँ जी मास्टर जी,
1: अंगुलीमाल क्या था कि
2: जरूर सुनी थी कहानी थी
1: जी। डाकू अंगुलीमाल क्या था कि वो जंगल में जो भी जाता था उसको उंगली काट के गले में माला पहनता था और उसको मार के उसका वो सामान लूट के और वो सब खा जाता था। तो लोग उस तरफ कोई जाता नहीं था। तो जब भगवान बुद्ध को पता चला कि कोई अंगुलीमाल इस प्रकार का डाकू है तो उन्होंने बोला आज मैं जाऊंगा। लोगों ने बहुत मना किया कि नहीं जाओ, ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो भगवान बुद्ध चले गए जंगल में, अंगुलीमाल आया। उन्होंने बोला कि अपना फरसा निकाला कि आप वहीं रुक जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा। वो बढ़ते गए, अंगुलीमाल नजदीक आता गया। जैसे अंगुलीमाल नजदीक आया तो उनका प्रभाव जो भगवान बुद्ध का ऑरा था उस पर पड़ा और उसने अपना फरसा छोड़ दिया और बोला कि आप कौन है। उन्होंने बोला कि मैं बुद्ध हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बुद्ध है तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करो, तुम अपना ये सब छोड़ दो और इस तरफ बढ़ जाओ। अंगुलीमाल ने ये सब कुछ छोड़ के उनके शिष्य हो गए, भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए और वो गांव में आ गए। तो सब लोग उनसे डरते थे, अंगुलीमाल इस प्रकार का आदमी। लोगों ने उनके बहुत पत्थर मारे ये करा, लेकिन बाद में जब पता चला कि फिर भी अंगुलीमाल ने कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि एकदम वो भगवान बुद्ध की शरण में हो गए थे। तो इस प्रकार से एकदम बुद्ध को देखते ही लोगों के मन में एक भाव बन जाता था, अच्छा भाव आ जाता था। और यही एक हम लोग कहते हैं कि जो बड़ा गुरु होता है उसका क्या प्रभाव होता है, और जो बड़ा संत होता है उसका प्रभाव यही प्रभाव होता है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं और जब वो विचार बदलते हैं तो उनका जीवन बदल देता है। और यही हमारा एक सत मार्ग है, उसी मार्ग पे हमको बढ़ना चाहिए। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। क्यों ना शांता जी के पिटारा से एक फिर निकाल दिया जाए, उसके बाद हम खबर सुनेंगे।
0: जरूर मास्टर जी, शांता जी जो तैयार करके रख चुके हैं एक सुंदर सा गीत, और जो आज का संदेश में आप रखे कि बुद्ध पूर्णिमा जो इस किस लिए हम मनाते हैं और किस प्रकार से लोग, कितने लोग, मैं ये बात से भी हैरानी हो रहा कि कितने लोग जो बुद्ध देवता को मानने वाला है ना दुनिया पे। और
1: हाँ, भगवान बुद्ध
0: को मानने वाले हैं
1: 50 करोड़ लोग हैं।
0: हाँ, 50 करोड़ लोग जो इतने,
1: यानी 500 मिलियन।
0: तो दोस्तों, आज का संदेश में राजेंद्र जी ने इतना सुंदर रूप से जो संदेश रखे कि बुद्ध भगवान के अंतर्गत, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे। और शांता जी कुछ कहने वाले थे।
1: हमारे मामा जी भी सुन रहे हैं बुद्ध भगवान का कार्यक्रम, तो वो भी बड़ा अच्छा है।
0: तो हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुनने वालों, आपके सेवा में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती मीनाक्षी जी, जो अपने ओर से भी संदेश रखने वाले हैं, और अभी हम कनेक्ट होने वाले हैं अनुराधा जी से। अनुराधा जी जो दिल्ली से हम सब के साथ अभी कनेक्ट होने वाले हैं, तो अनुराधा जी के से पहले मीनाक्षी जी जो अपना संदेश रखने वाले हैं, तो मीनाक्षी जी आपका माइक हम ऑन कर देता हूँ और
1: जी धन्यवाद,
0: अपना संदेश को रखिए।
1: मैं एक कहानी के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि एक प्रश्न उठता है, जीवन मृत्यु दोनों चलते रहते हैं, तो क्या जीवन ही चलता रहे और मृत्यु ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मृत्यु आवश्यक है। तो हम हर एक कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है और ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। इसके लिए हम एक कहानी में बताना चाहती हूँ, उसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि मृत्यु भी आवश्यक है। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके, कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर लीजिए, वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे।
0: तो मीनाक्षी जी, अब इसमें थोड़ा मैं और प्रश्न थोड़ा अब और खौलने लगा अंदर से ना, कि आप वहाँ एक झील है अभी आपने कहा, उसे हम हिंदी में कैसे कह सकते हैं, झील बोले तो?
1: झील वैसे तो हिंदी ही शब्द है।
0: हाँ, पर
1: तालाब
0: हाँ। यहाँ जाने की जिसमें जल
1: है, वाटर बॉडी
0: हाँ।
1: तो जब उसने कहा ना कि आप मुझे बताइए, तो संत ने कहा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, तालाब मिलेगा, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्हें करहाने की आवाज आई। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूँ तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार कीजिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे, उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जंगल में कौन झगड़ सकता है।
0: अरे, अब समस्या थोड़ा गर्म हो गया।
1: जी बहुत
0: समस्या थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि वो पीला फल तो जो आपने कहा कि अमरता यानी कि अमर होने के बावजूद वो अब जवान भी होना चाहता था
1: जी,
0: तो शांता जी क्यों ना पिटारा से एक गीत पहले सुना देते हैं।
1: बिल्कुल, इस वक्त बहुत जरूरत है गीत की।
0: गीत की बहुत जरूरत हो गया मेरे ख्याल से। तो हमारे सुनने वालों, ये पीला फल वाला संदेश अभी आप सुनेंगे, पर एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं पहले।

0: मीनाक्षी
1: ना, मीनाक्षी जी
2: जी,
1: आप झील के बारे में बात करते हैं तो झील होता है, तालाब होता है और झरना होता है
2: जी।
1: इसमें अंतर क्या है? सब तो पानी पानी है पर उसमें फर्क तो होगा ना।
2: ये अलग अलग प्रकार की वाटर बॉडीज हैं
1: जी।
2: झरना पहाड़ों से नीचे गिरता है।
1: अच्छा, वाटरफॉल
2: से नीचे गिरता है, उसको झरना कहते हैं।
1: वाटरफॉल, हाँ
2: वाटरफॉल,
1: हाँ।
2: और झील जनरली पहाड़ों में या प्लेन में भी पाई जाती है,
1: हाँ।
2: और बोटिंग वगैरह करते हैं उसमें।
1: अच्छा,
2: और तालाब, हाँ। तो एक वाटर बॉडी है जो कि जनरली जैसे गांव वगैरह में अमूमन देखने को मिल जाता है, जिसका पानी का उसकी सफाई इतनी नहीं हो सकती है, तो उसको जनरल जैसे गांव के जो,
1: हाँ, तालाब जिसमें
2: वगैरह होते हैं वो उसमें नहा लेते हैं।
1: हाँ, जैसे तालाब में वो, हाँ, लोटस ब्लूम होता है ना, हाँ, उसमें वो तालाब कहते। और झरना, ना झरना तो वाटरफॉल, और जिसमें रिवर कहते हैं, रिवर,
2: हाँ
1: हाँ।
2: नदी तो एक अलग चीज है
1: जी।
2: नदी तो काफी लंबी होती है, समुद्र में जाके मिलती है
1: जी।
2: तो नदी तो बहुत लंबी है,
1: गंगा नदी,
2: जैसे गंगा नदी।
3: तो शांता जी, अब आपने छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा और इस पे थोड़ा दृष्टांत डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉलैंड में ऐसा स्थान है जहाँ पर कमल का फूल जो तालाब में मिलेगा?
1: अब तो होता है या हमारा क्या करते हैं, हमारा हॉलैंड के लोग जो है, जो प्लांट के अंदर के स्टडी करता है ना, ये अन्य देश से जाकर पौधा को लेकर आता है। और यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर वो सब कैसे बोले, वो सब
2: कल्टीवेट करते हैं उसको
1: जी। मुझे हिंदी शब्द नहीं पता, तो उसके अनुसार देखते हैं। और उसके बाद में सब यहाँ तालाब में भी डाल देते हैं, रिवर में भी डाल देते हैं। तो हम देखिए, अबे देखे ना, अब इस मौसम जो शुरू हो जाएगा, सोमर जो आएगा ना हर साल, तो देखना ये नदी में वो कैसे कहते हैं, लोटस जो है,
2: कमल के फूल,
1: वो असली वाला नहीं बल जो छोटा छोटा रोस वाला होता है, सफेद वाला, पीला सा, इसे वो सब होता हैगा।
2: हाँ, मैंने खुद देखा है।
1: देखो
2: यहाँ पे जो कैनाल्स हैं,
1: हाँ,
2: तो एक बार मैं क्राइनस्टीन जा रही थी कार से,
1: जी,
2: तो मैंने देखा है कैनाल में बड़े कमल के फूल थे।
1: देखो
2: जी,
1: हाँ,
2: हॉलैंड में कमल के फूल देखने को मिलते हैं।
3: मैं इस पे थोड़ा सा और जोर देना चाहता हूँ। एक शहर है यहाँ, वेटफेन कहलाते है ना, वेटफेन कहलाते हैं, वो काफ़ी दूर है डेन हाग से, और वो एक बड़ा गहरा सा और तालाब खोद करके वो शहर को बनाया गया है। और वहाँ वो जो तालाब है उसमें आपको बिल्कुल ये रोज के कैसे बोल रहे हैं रंग, गुलाबी कमल के फूल वहाँ हैं हॉलैंड में। तो अच्छा लगता है देखने के, और बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे यहाँ तक भी कमल का फूल है।
2: और इसके साथ वैसे तो हॉलैंड फूलों का देश है ही है,
3: फूलों का देश है ही है,
2: यहाँ तो फूलों को आप देखते रहिए,
3: हाँ, जाओ
2: खुश होते रहिए,
3: कोई कौन हो तो
2: रंग बिरंगे फूल बहुत मजा देते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है।
3: हाँ, दुनिया के हर एक प्रांत से देखो, हाँ, लोग आते हैं यहाँ पर वो फूल देखने को।
1: हाँ, और देखो ना, ये केकनहॉफ जो हम कहते हैं ना, सिलसिला पिक्चर यहाँ बना है, वो केकनहॉफ का जो तेलप है ना, उसको उनका बीच जो है वो तुर्कैये से लाया गया।
2: हाँ, ये कहाँ आ गए हम
1: जी,
2: हाँ, यही था। अमिताभ बच्चन और रेखा जी के ऊपर फिल्म आया गया था
1: जी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
2: हाँ, बड़ा मजा आता है वहाँ पर देख के उस पिक्चर। हाँ,
3: पर और भी यहाँ का फूलों का फिल्म किया गया है, रूप के रानी और चोरों का राजा जो बनाया गया, जिसमें श्रीदेवी काम किए थे अनिल कपूर जी के साथ, और जो यहाँ डनहाग में वेस्टर ब्रुक पार्क, ये बिल्कुल पास है स्केफेनिंग के पास, और वहाँ पर शूटिंग हुआ था।
1: अच्छा,
3: कोर हाउस में कुछ शूटिंग हुआ था और वेस्टर ब्रुक पार्क में वहाँ पर शूटिंग किया गया था। तो कहने के तात्पर्य यह है कि अभी जो संदेश आप सुनाने वाले हैं, जो पीला फल हम सबको मिलने वाले, जो हमें ना सिर्फ अमर करने वाला
2: जी जी,
3: पर हमारा युवा को दोबारा लाने वाले, जो शायद इस समय घर पे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे होंगे कि भाई अब समय बीत गया, कितना समय बीत गया, क्यों ना हमारा युवा आ जाए। तो अभी आपके लिए देखते हैं कि मीनाक्षी जी क्या सुनाने वाले हैं।
2: अभी मेरी कहानी
3: पूरा नहीं हुआ,
2: नहीं नहीं,
3: क्योंकि आपने कहानी अब वहां ला करके और हम लोग एक गीत की ओर बढ़ गए थे, पर संदेश आगे बढ़ाइए मीनाक्षी जी।
2: जी मैं बढ़ाती हूँ आगे। और तो इसके बाद जब उसने कहा कि पीले फल लगे होंगे, उन फलों में एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने चार जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा तुम क्यों झगड़ रहे हो। उनमें से एक बोला मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है, वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी वह जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूंगा। उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा

0: समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यानमय नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो भक्ति बन जाती है। और जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। मृत्यु बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: इस बात को समझ आ गया कि वो लालच मुझे नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: कि वो पीला फल खाने से, शांता जी आपने तो तैयार हो गए होंगे कि वो पीला फल मिल जाता तो मेरा युवा आ जाता, पर ऐसा भी ये सुनने वालों भी इस बात को सुन करके ये संदेश जो बड़ा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात रखे आपने, क्योंकि मृत्यु जीवन है तो मृत्यु भी है। और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हो शांता जी?
2: ये जीवन है,
1: ये जीवन है। तो सुन लेते हैं कुछ।
2: हाँ माँ मीनाक्षी जी, वाकई में उम्र ढलते ही
0: जी
2: लोग चाहते हैं जवान रहने रहना चाहते हैं। काफी लोग के हमने भी देखे और सुने भी ऐसे,
0: लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है।
2: बिल्कुल,
0: वो उनके सोचने से क्या ये थोड़ी हो सकता है कि वो जवान हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो तो गया। अब आप ये सोचें कि जो कल मैं थी वो आज हूँ, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं कल जो बीता हुआ कल है उसमें तो अब नहीं जा सकती।
2: बिल्कुल,
0: अब तो मैं आने वाले कल को ही देख सकती हूँ। तो ये तो प्रकृति का नियम है।
2: हाँ, और काफी लोग बहुत पछताते हैं।
0: हाँ।
2: कि भले कि मैं ये कर लेती या वो कर लेती, वो तो समय गए।
0: इसीलिए कहते हैं कि समय पर हमेशा अलर्ट और विजिलेंट रहना चाहिए, समय को पकड़ के रखना चाहिए, जिससे, क्योंकि समय दुनिया में सबसे जो महंगी वस्तु है वो है समय। एक बार गया
2: तो गया।
0: वापस नहीं आया।
2: हाँ।
0: इसलिए समय का हर वक्त हमको ध्यान रखते हुए रहना और आगे बढ़ना चाहिए, समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
1: कहते हैं ना कि बगैर कुछ करे एक ही चीज आगे बढ़ते जाते हैं
0: जी,
2: वो है उम्र,
1: वो है उम्र। तो उस पे भी बबली जी आपने हाथ उठाए थे, कुछ कहने वाले हैं? क्योंकि पीला फल खाने वाले हैं क्या?
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ, जैसे अभी मीनाक्षी ने बताया, शांता जी ने बताया, आपने बताया कि जन्म के साथ मृत्यु भी है और वो तो प्राकृतिक का नियम है। और लोग सब कुछ कर सकते हैं, अगर बाल सफ़ेद हो गए काले कर लो, दांत निकल गए नकली लगा लो, आंखें कमज़ोर हो गई चश्मा पहन लो, हाथ पैर अगर नहीं है वो भी नकली आजकल बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो तो आनी है और जरूर आएगी,
1: वो तो जरूर आएंगे। तो क्यों ना शांता जी वही गीत जो आपने चुन करके रखे है सुना देते हैं सभी सुनने वालों को
2: जी।
0: और ये गीत बिल्कुल जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं उससे एकदम मेल खाता है। मुझे बिल्कुल लगता है कि दर्शकों को ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। ये जीवन है।
2: हाँ, किशोर दा के
0: बहुत ही बढ़िया गीत है।

0: ये जीवन है, ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराधा जी जो दिल्ली से और हमारे साथ जुड़े हुए। तो अनुराधा जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको नमन करते हुए आप अपना संदेश को रखिए।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगलमय होंगे। बहुत दिन हो गए आपको मैंने कोई कथा नहीं सुनाई। चलिए एक आज कहानी हो जाए। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आज हमने गरीबों को भोजन कराया, आज हमने ये बांटा, या आज हमने किसी को, किसी गरीब को दान दिया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित मैं आप सबको एक अविस्मरणीय कथा सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो, मेरी एक विनती उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिन बाद उसे वह साधु पुनः मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी विनती का स्मरण कराया, उनको याद दिलाया कि आपसे मैंने पूछा था कुछ भगवान से पूछने के लिए, तो आपने क्या पूछा। साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए केवल 5 बोरी अनाज है, इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं जिससे वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। ऐसे कहकर साधु ने उसको बता दिया। अब समय बीता, साधु उस लकड़हारे को पुनः मिला तो फिर से लकड़हारे ने कहा, हे ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो तो मेरी यह विनती उन तक और पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। अब ये कहकर अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा? संजय जी, आपको क्या लगता है? चलिए मैं कहानी में आगे बढ़ूंगी, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और उसके बाद जानते हैं कि क्या हुआ।
0: अनुराधा जी, मेरा तो ये है कि आप कहानी को आगे सुनाइए, पर क्यों ना लकड़हारा से पहले जो वृतांत। मीनाक्षी जी, आप भी कुछ कहने वाले हो?
2: लकड़हारा
0: के वृतांत जो
3: हाँ नहीं, उसमें जो अनुराधा जी ये जो कहानी सुना रही हैं उसमें हम बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है।
0: हाँ, क्योंकि वही हाल हो रहा है ना, वो पीला आम के तरह कि क्या होने वाला है अभी।
3: जी जी, और इन्होंने बहुत हमारे माइंड में वो एक बना दिया है कि क्या होगा क्या होगा। मैं इसमें सोच रही हूँ बैठ के कि क्या हुआ होगा, लेकिन चाहती हूँ कि साथ में गीत का भी आनंद लूँ, तो इसलिए मैं पहले गीत भी सुन लूं और फिर अनुराधा जी तो है ही हैं हमें क्या हुआ होगा बाद में बताने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों ना गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा।
3: तुम एक पैसा दोगे
0: और कितना मिलेगा? 10 लाख देंगे।
3: जी,
0: तो सुनो वालों, चलते हैं उस गीत की ओर।

0: के सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, फिल्म का नाम जो 10 लाख। फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और शांता जी, ये एक्टर का नाम क्या है?
1: संजय खान।
0: ओ मेरा नौरासी भाई।
1: हाँ।
0: संजय खान शायद मेरा पिता ने ये फिल्म देख करके और नाम, क्योंकि कितने ऐसा हुआ है ना
2: जी, जी बिल्कुल।
0: लोग
1: मीनाक्षी जी आपके नाम भी ऐसी धरा?
2: हाँ, मेरा भी उसकी कहानी है पीछे
1: जी।
2: जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी साउथ इंडिया के टूर पे गए थे
1: जी।
2: तो वहाँ पर उन्होंने मदुराई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए थे।
1: अच्छा।
2: तो उनको वो देवी का नाम बहुत अच्छा हुआ और उनके आने के 10-15 दिन बाद मैं पैदा हुई तो उन्होंने फिर उन्हीं के नाम पर मेरा नाम मीनाक्षी रखा था।
1: ओ, पापा जी सोच रहे साक्षात देवी के
2: हाँ बिल्कुल। और वैसे भी भारत में तो अधिकांशतः नाम देवियों के ऊपर ही होते हैं।
1: बात सही है।
2: हाँ, काफी कुछ देवियों के नाम पर ही होते हैं, जैसे राधा, सीता, शांता।
0: हाँ ऐसा, हाँ ऐसा ही हो गया हुआ होगा। हाँ। शांता जी आपका नाम भी शांता रखा गया, जरूर कुछ सोच के आपके माता पिता ने रखे होंगे ना?
1: पता नहीं, होते तो पूछते। लोग कहते हैं शांता राम जी का बहन का भी नाम है।
2: जी जी जी जी।
1: हाँ।
2: जिसका लोगों को बहुत कम पता है, 4 भाइयों में एक बहन थी सबसे बड़ी।
1: सबसे बड़ी। हाँ।
2: जी जी शांता।
1: और वही के पति जो है शांता का पति, वही अग्नि में से वो खीर निकल आया था ना।
2: हाँ, हाँ, कहानी।
1: हाँ वो तो बहुत सारे कहानी है।
2: हाँ।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम लेकर के, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराधा जी, अपना संदेश जो हम सबको सुना रहे हैं। तो अनुराधा जी आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
3: तो चलिए आगे पता लगाते हैं कि कहानी में क्या हुआ। तो अब जब साधु ने कुछ ऐसा करा कि लकड़हारे के घर में इतना सारा अनाज पहुंच गया, तो लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार कर उसे उसका सारा हिस्सा अनाज का भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर साधुओं को, गौ को और जितनी गायें थीं और गरीबों को और जितने भी उसे कोई जो भूखा इंसान नजर आया उसको उसने खिला दिया और स्वयं भी भरपेट खाया।

0: से करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना।
1: सभी को गले लगाना और मोहब्बत में लुट जाना, ये सुंदर सा गीत निकाला गया, कौन सा फिल्म है शांता जी?
2: अधिकार
1: फिल्म, जिसमें एक्टर प्राण एक बड़ा बेहतरीन एक्टर होते थे और अपने समय पे। दोस्तों, जो कार्यक्रम में अनुराधा जी हम सबके इंतज़ार करवा रहे हैं, तो क्यों ना वो रास की ओर बढ़ते हैं। तो अनुराधा जी, हम सबको वो रास जो आप अभी तक खुलासा नहीं हुआ है उसके, और संदेश जो हम सबके लिए आप रखने वाले हैं, सुनाइए।
3: तो चलें और पता लगाएं कि जब लकड़हारे ने ऋषिवर से पूछा कि ऐसा क्या है कि रोज अब मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, तो साधु ने लकड़हारे को समझाया, तुमने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज साधुओं को, गांवों को, गाय जीती हैं और गरीबों को और भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उनके हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। तो कथासार का ये समझे कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया, तो ये हम बहुत गलत समझते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, क्योंकि हम तो बस एक जरिया है जो हम दे पाते हैं, पर देने वाला तो ऊपर वाला ही हमारे हाथ में इतना देता है कि हम दूसरों को दे सकें। देखिए, दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते या दिलाते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने दिलाया, और वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है, आपको केवल परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है। हम तो एक जरिया है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए भगवान ऊपर वाला हमसे दिलवाता है, ताकि उन तक उनकी जरूरतों जितनी और लोगों की जरूरतें हैं पहुंचाने के लिए, जो जरूरतमंद है उनकी हम मदद कर सकें। तो निमित्त होने का घमंड कैसा, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही ये सब कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं मैंने दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये मैं जब हम बोलते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे को भी जो देने वाला है वो ऊपर वाला ही है, और वो चाहे तो हमें, हम खाली एक जरिया हैं, तो हमें हमेशा भगवान का, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि हम ऐसे, हमें वो ऐसा समझते हैं और हमें

0: ऐसा हमें इतनी मान्यता मिलती है कि हम दूसरे को हमारे जरिए हम किसी की मदद कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे, वो ऊपर वाला ही कर रहा है। देखिए बड़ा सुंदर कहा है, दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पे दूर करे संताप। तो ये बहुत सुंदर कहा है कि हम जब दान देते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, और सब दान देने पर जो दुख दूर हो जाते हैं, दुख दूर होने से होके सब पाप खत्म हो जाते हैं, और नाथ आकर हमारे भगवान हमारे ही घर आते हैं और हमारी सब दिक्कतें हमारी सब वो खत्म कर देते हैं। तो ऊपर वाला ही जो है हमें उसका नाम लेना चाहिए, और हमें हमेशा कृतज्ञ और रहना चाहिए कि भगवान हमारे हाथों से ही दान दक्षिणा कराते हैं, ये हमारे हाथ पर नहीं है, ऊपर वाले का है। चलिए इसी कहानी के साथ आगे बढ़ा जाए और संजय जी एक और गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, एक और गीत की ओर बढ़ेंगे। इतना सुंदर संदेश जो आपने रखे और जो रास देखो क्या था ना, तो अभी टाइम तो थोड़ा जल्दी है, पर बबली जी आप क्या सुनाने वाले हैं?

भारत के एक महान सम्राट हुए हैं जिनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जानते लोग उनको। सम्राट अशोक, पिताजी का नाम बिंदुसर, माता जी का नाम सुभद्राणी। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णमयी काल मानते हैं। जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहे थे। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर यानी हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनकी अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना ही कोई छुट्टी घोषित की जाती है।

मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं तो उसके लिए घमंड मत करिए, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग इस कार्य को कर सकते हैं लेकिन ईश्वर ने आपको ही चुना है। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातें आपको पसंद आई होंगी और अपने जीवन में भी आप लोगों की मदद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अनुराधा का नमस्कार।

सावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोतागणों को मेरा यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जो आपने आज संदेश सुना है भगवान बुद्ध का, उसको हम अमल में लाते हुए यानी अपने जीवन में उतारते हुए इसी प्रकार से हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, शुभ दिन, शुभ रात्रि, हर हर शंभु।

0: जमाना।
1: शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना दो गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है।

0: तड़प।
1: दोस्तों जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
0: लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा।
1: आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए हमारे मास्टर जी भारत से राजेंद्र सिंह जी, हमारे कुलेखा साथी अनुराधा चंद्र जी और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। स्टूडियो में उपस्थित है मीनाक्षी जी और शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। मैं हूं आपका सेवक संजय, यही आशा लेकर कि आपको जरूर कुछ अच्छा लगे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने भी ये कहा है, कहा है कि भाई मिलते रहना तो जिंदा रहे।

कुछ रिश्तों को मुलाकातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस याद आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वपन विज्ञान।

सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी।

आज हम विचार करेंगे शकुन विचार, और आज हम करेंगे कुत्ते के ऊपर शकुन विचार। कुत्ता गमन समय जोशवन फरफर दे कान, तुरंत यात्रा टाल दो अशुभ शकुन पहचान। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गमन यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से फरफर करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो अपनी यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। शकुन यात्रा में कुत्ते को शकुन रतन कहा जाता है। देवराज इंद्र शर्मा के कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए और गिद्ध को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू रिश्वत के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हो गया था, इसलिए इस विश्वासघात का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम भविष्य में मृत प्राणियों का भक्षण करोगे और प्राणियों को तुम्हारा दर्शन अशुभ फलदायक होगा। इसके साथ ही शर्मा को वरदान दिया कि तुम कर्तव्य निष्ठा के कारण समझ ग्रस्ती प्राणियों में सम्मान प्राप्त करोगी।

विद्वानों का मत है कि प्रेतग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है। श्वेत वर्ग वाला कुत्ता विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, पीत वर्ण वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहलाता है। यदि गमन कर्ता के सम्मुख श्वान सुनने वालों, जैसे हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता आगे से आ गए तो क्या होता है? दाहिने पैर से दाहिना अंग खो जाता है तो उत्तम फल मिलता है। बाएं पैर से दाहिना अंग खो जाए या बाएं पैर से बाएं अंग खो जाए, अशुभ फल मिले। जमाई ले, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, निर्धबी होकर जमीन पर लेट जाए, यात्रा कार्य में विघ्न असफल। जिन वृक्षों पर अंकुर फूल लगे हों, जिनमें दूध निकलता हो, गंदे पानी से भरा मटका, गोबर, खेत, ईंट, मंदिर अन्न के समूह, भंडार, अन्य शोभायुक्त स्थान या वस्तु पर कुत्ता मूत्र त्याग करता दिखे, अनेक प्रकार के लाभ।

सुनने वालों, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कुत्ता अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखाई दे, अगर वो अपना दाहिने पैर से दाहिना अंग को खुजलाता है तो हमें उत्तम फल प्राप्त मिलता है, और अगर बाएं पैर से दाहिना अंग खुज जाए तो उससे हमें अशुभ फल मिलते हैं। सुनने वालों, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, वो जमाई लेता है यानी उबासी आती है उसको, मलमूत्र का त्याग करता है तो यात्रा कार्य में विघ्न आने वाले हैं, तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। सुनने वालों, और जिन वृक्षों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, दूध निकलता है और पानी से भरा मटका या गोबर या खेत कुछ भी दिखाई दे और वहाँ पर कुत्ता यानी मूत्र त्याग करे तो उससे लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों,

आसन, छत्र, छाया, भी या धूल के ढेर पर मूत्र त्याग करें तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, ओखली, मूसल, कांजी से भरे पात्र, सूप पर अपने दाहिने अंग को उठाकर मूत्र त्याग करें तो बहुत सा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, मुख में रोटी, पूरी, मिठाई, फल, मांस आदि दिखे, सदा ही धन का लाभ होता है। सुनने वालों, ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर से अपने मस्तक को खुजाता है तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों,

सुनने वाले, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई, अगर ये सब कार्य कुत्ता करता दिखाई दे तो उन सब कार्यों में धन प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दूध अथवा जल के पात्र को देखकर आंख मीच ले, बाद में उसी स्थान पर सो जाए, वस्त्र भूषण का लाभ। सोता हुआ गर्दन ऊंची करके देखें, अर्थ हानि असफलता। कीचड़ से सना हुआ मुख में पत्थर अथवा हड्डी लेकर आ जाए, यात्रा में चोरी का भय। मुख में हड्डी लेकर भौंके, मृत्यु समकष्ट। समुख आया कुत्ते की पूंछ कटी, कान कटे रोगी। दुर्बल हो, चिंता हो, भयतुर हो, असफलता की प्राप्ति। जल से बाहर निकलकर अंग हल्लाता हुआ, चोरी का भय।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि दूध अथवा जल के पात्र को देखकर कुत्ता अपनी आंखें बंद कर ले और बाद में उसी स्थान पर सो जाए तो वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता है। सुनने वालों, अगर सोता हुआ कुत्ता गर्दन ऊंची करके देखे तो उसमें असफलता मिलती है। सुनने वालों, अगर कुत्ता कीचड़ से सना हुआ है और मुख में पत्थर अथवा हड्डी को लेकर आए तो यात्रा में चोरी का भय होता है। सुनने वालों, मुख में हड्डी लेकर भौंके तो उस समय असफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों, जल से बाहर निकलकर अंग हिलाता है तो चोरी का भय होता है। सुनने वालों,

घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता बार बार भौंके तो राज्य दंड का भय तथा चोरी का भय। घर में घुसकर खंभे को आलिंगन करे अथवा चूल्हे पर चढ़ जाए तो प्रियजन से समागम। पिछले पैर को अगले से खुजाए सभी कार्यों में सफलता। बहुत देर तक आकाश गोबर मांस विष्ठा को देखता रहे तो सुंदर स्त्री धन का लाभ। अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा किसी प्रियजन का मरण हो। रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले औरतों का गर्भपात बलात्कार की दुर्घटना अग्नि कुंड से जन धन हानि।

सुनने वालों, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें हमें राज्य दंड कि हमें किसी चीज़ के चोरी का भय भी होता है, कोई हमारा चोरी कर लेगा या फिर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। और घर में घुस कर अगर खम्भे को पकड़े या चूल्हे पर चढ़ जाए तो हमारे प्रियजन से मिलन होता है, पिछले पैर को अगले से खुल जाए तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बहुत देर तक आकाश, गोबर या मास्ट को देखता रहे तो सुंदर स्त्री का लाभ होता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा मिलती है और किसी प्रियजन का मरण का समाचार सुनाई देता है। अगर रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले तो औरतों का गर्भपात, बलात्कार की दुर्घटना और अग्निकुंड में जल हानि ये सब प्राप्त होते हैं। सुनने वालों,

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रातः अग्नि कोण में सूर्य को देखकर भौंके, अग्नि या चोरी का भय। दिन के मध्य में भौंके, मृत्यु का भय। सायंकाल में भौंके, लड़ाई झगड़े में रक्तपात। सायंकाल में सूर्य की तरफ मुख करके रोए, महान दुख। किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे, निश्चित रूप से चोरी। घर के द्वार पर सिर रखकर स्त्री को देखे और कू कू करे, स्त्री को रोग। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि जब सूर्य की किरणें सुबह धरती पर पड़ती हैं और कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो अग्नि या चोरी का भय होता है, यानी आग लगने का खतरा या फिर चोरी का डर लगता है सुनने वालों। और दिन के मध्य में भौंके तो मृत्यु का भय, और साया का शाम को भौंके तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा यानी ऐसे सुनने को मिलता है। और शाम रात को भौंके और फिर महान दुख। और किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी का भय, चोरी का डर है। और घर के द्वार पर सिर रखकर किसी स्त्री को देखे और कुकू की आवाज़ करे तो इससे स्त्री को किसी भी रोग का खतरा रहता है सुनने वालों।

घर के भीतर धे करके मुख बाहर निकाल कर किसी स्त्री को देखे और ऊंचा स्वर करे, स्त्री के व्यभिचरणी का संकेत। मांस हड्डी भोज्य को राख के ढेर में छुपाए, अग्नि भय परवासी के पीछे आकर रोए, मृत्यु भय की संभावना। परवासी को कू कू करता हुआ बार बार आलिंगन करे तथा उसकी प्रदक्षिणा करे, अवश्य ही कारगार में जाना पड़ता है। गोबर से लिपे चौक में आकर बोले, अति संपदा प्राप्त। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी के घर की स्त्री को देखकर ऊंचे स्वर में बोले तो स्त्री के व्यभिचरण का संकेत मिलता है। अगर मांस हड्डी भोज्य को देखकर राख के ढेर में छुपाता है तो उससे अग्नि का खतरा रहता है। सुनने वालों, अगर प्रवासी के पीछे रोए, अगर कोई अरे प्रियजन आता है और उसके पीछे पीछे जाए तो मृत्यु की संभावना रहती है। अगर प्रवासी को कुकू करता हुआ बार बार उसके गले मिले और उसकी प्रदक्षिणा करे तो अवश्य ही उसको जेल में जाना पड़ता है। और गोबर से लिपे चौक में आकर बोले तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने गीत सुना। अब गीत के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बता रही थी कि स्वप्न विज्ञान और उसमें कुत्ते के शकुन और अपशकुन। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कुत्ता अगर जगह को खो दे तो महान कष्ट, एक आंख से रोए कल्याण और शुभ, परवासी के आगे मूत्र करके आ जाए कार्य में असफलता, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, गमन करता के सम्मुख आए धन धन्य की प्राप्ति, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए दोनों नेत्रों को नचाए मृत्यु सम कष्ट, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी जगह को खोता है तो महान कष्ट होता है, अगर कुत्ता एक आंख से रोता है तो कल्याण और शुभ की प्राप्ति होती है, प्रवासी के आगे मूत्र करके आ जाए तो कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए और निश्चय रूप से उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, गमन कर्ता के सम्मुख आए तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए यानी दोनों कानों को हिलाए और दोनों आँखों को नचाए तो मृत्यु का समय कष्ट होता है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे अपने दक्षिण ओरू को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत की संभावना होती है। सुनने वालों,

तो मैं आप सबको बता रही थी कि कुत्ते के बारे में कि अगर कुत्ता हमारे सामने आ जाए या सपने में आ जाए तो उससे क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं सुनने वालों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उदार को बार बार चाटे उसी दिन यमलोक की प्राप्ति। रोगी के सम्मुख अपनी पूँछ तथा अपना हृदय स्थल बार बार चाटे या सूंघे 2 या 3 दिन में उसकी मृत्यु। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता आंगन में आकर सो जाए फल की सिद्धि नहीं होती। किसी रोगी के सम्मुख कानों को फड़फड़ा कर शरीर समेट कर सो जाए रोगी शीघ्र यमलोक को चला जाता है। यदि रोगी के सम्मुख देह को समेट कर दोनों नेत्र बंद करके मुंह फड़फड़ा लंबा श्वास छोड़े यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेता है। किसी घर में जिसमें रोगी हो किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या रस्सी मुख में लेकर प्रवेश करे रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा।

सुनने वालों, इन सब बातों का ये मतलब है कि कुत्ता बार बार अपने को चाटे तो उसी दिन यम लोग की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और रोगी के सम्मुख यदि कुत्ता अपनी पूंछ अपने हृदय से बार बार लगाए, चाटे या सूंघे तो यो दो या तीन दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता घर के आंगन में आकर सो जाए तो फल की प्राप्ति होती है सुनने वालों। किसी रोगी के सम्मुख दोनों कानों को अगर हिलाता है और शरीर को समेट कर सो जाता है तो रोगी सीधे यमलोक को चला जाता है सुनने वालों। यदि रोगी के सम्मुख अपने शरीर को समेट कर और दोनों आँखें बंद करके और लंबा श्वास छोड़ता है तो यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेते हैं सुनने वालों। किसी घर में जिसमें रोगी हो या किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या किसी मुख में लेकर प्रवेश करें तो रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा सुनने वालों।

पर वासी के सम्मुख फिष्टा या सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर आगे आकर भाग जाए तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, थोड़ी दूर साथ चलकर पीछे लौट जाए, बहुत धन मिलने। पर वासी के सम्मुख पुष्प लेकर आए, अति विपुल संपदा मिले। यदि वह श्वन काला हो, कार्य नाशक का सूचक। परवासी के संग दो बाई ओर चले, सुंदर स्त्री तथा धन प्राप्ति। यदि दाहिनी ओर चले, चोरी से धन की हानि। परवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी और को लेकर आ जाए, निश्चित ही चोर धन चुरा ले जाएगा। सुनने वालों,

उसका कुत्ता यात्री के सम्मुख बैठ जाए और सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर, तो इसका मतलब है उत्तम वस्तु की प्राप्ति, कि उसे कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होगी सुनने वालों। और कुत्ता अगर थोड़ी दूर चलकर पीछे वापस लौटाए तो बहुत सारा धन मिलता है सुनने वालों। और अगर कुत्ता फूल लेकर आए, अति विपुल संपदा और बहुत सारे धन प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर सुनने कुत्ता बाईं ओर चले तो सुंदर स्त्री और धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन की हानि, कि हमारा धन कोई चुरा लेगा सुनने वालों। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी को लेकर आगे आ जाए तब भी चोर को धन चुरा लेगा सुनने वालों।

यात्री के समक्ष ताजा हड्डी लेकर आए शुभ, सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए अशुभ, अपने शरीर को बार बार खुजाए कार्य में असफलता, दाई और जोड़ा साथ लेकर चले या आलिंगन करे तो स्त्री या धन की प्राप्ति, दाई ओर से बाई ओर को घुमाता हुआ चला जाए संग्राम में पराजय कार्य का नाश, क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप एवं बंधन मिलता है, कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे राजा धन छीन ले, गमन अथवा प्रवेश समय युद्धरत युद्ध में पराजय, प्रवासी को देखकर क्रोध से घूर घूर करे या भय से भौंके, निश्चित रूप से धन हानि।

अगर कुत्ता यात्री के आगे पीछे ताज़ा हड्डी लेकर घूमे सुनने वालों, तो उसका मतलब है कि शुभ प्राप्त होते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। और सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपने शरीर को बार बार खारिज करता है तो कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। दाई और जोड़ा साथ लेकर चले और तो स्त्री या धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और कुत्ता दाई ओर से बाई ओर घूमता हुआ चले तो संग्राम में पराजय और कार्य का नाश होता है सुनने वालों। क्रोधित होकर आगे बढ़े, श्राप एवं बंधन मिलता है। कुत्ता अरे क्रोध से गुस्से से आगे दौड़ा आए तो उससे श्राप मिलता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपना कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे तो राज धन सब छीन जाता है सुनने वालों। अगर कुत्ता घर में प्रवेश करे या रात में तो युद्ध में पराजय, तो युद्ध में हानि मिलती है सुनने वालों। और अगर कुत्ता यात्री को देखकर क्रोध से घुर घुर की आवाज़ करे या भौंके तो निश्चित रूप से उसे धन की हानि होती है सुनने वालों। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो गीत अमिताभ बच्चन की फिल्म का था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रवासी के सम्मुख अपनी पीठ को सूंघ कर दांत अथवा नख से वस्त्र खींचे, धन का लाभ। प्रवासी के बाएं अथवा पीठ पीछे क्रूर शब्द करे, युद्ध में पराजय।

अंग अप्रवासी कन्या हो तो कुत्ते के बाएं अंग को चेष्टाएं अनुकूल और शुभ होने वाली होती हैं, इसके विपरीत पर प्रतिकूल फल मिलता है। सुनने वालों, जो अभी मैंने आपको बताया तो इसमें ये था कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता यात्री की पीठ को सूंघे और अपने नखों से वस्त्र खींचे तो धन का लाभ होता है। सुनने वालों, अगर यात्रा पर अगर कोई जा रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे कूर शब्द करे यानी जोर से बोले तो युद्ध में पराजय होती है, और अगर पीछे पीछे भोंके तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। सुनने वालों, अगर पैरों को सूंघे तो शीघ्र यात्रा गमन हो, तो शीघ्र यात्रा पर चले जाना चाहिए। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए तो कार्य सिद्धि, तो कार्य सिद्ध होते हैं। सुनने वालों, जीभ से पेट को छुए तो लाभ मिलता है। सुनने वालों, विष्टा करे या जमाई ले तो चिंता से मुक्त, तो चिंता सारी दूर हो जाती है। सुनने वालों,

हल ले जाते हुए बाईं ओर, घर आते दाईं ओर मिले उपज अच्छी। जुआरी को जुआ खेलने जाते दाईं ओर मिले जुए में अत्यधिक लाभ। उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता, नींद लेता, मल त्याग करता, मिले तो लाभ प्राप्त। किसी गर्भवती के दाएं और भवन में या दीवार पर पेशाब करे पुत्र लाभ, यदि बाएं और ऐसा करे पुत्री का जन्म। मूत्र त्याग की बजाय प्रस्तन हो गर्भपात। सुनने वालों, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब स्वपन विज्ञान पुस्तक से निकाली जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, अगर कोई किसान हल ले जा रहा है और कुत्ता उसकी बाईं ओर आता दिखाई दे तो उपज अच्छी होगी, यानी कि उसकी फसल अच्छी होती है। सुनने वालों, जुआरी को जुआ खेलने जाते हुए दाईं ओर कुत्ता मिल जाए तो जुए में उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ, मल त्याग करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, और अगर किसी गर्भवती स्त्री की दाईं ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे तो पुत्र लाभ, यानी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यदि बाईं ओर ऐसा करे तो पुत्री का जन्म होता है। सुनने वालों, और मूत्र त्याग की बजाय प्रसन्न होकृत करे गर्भपात। अगर कुत्ता मूत्र त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो उस स्त्री का गर्भपात हो जाता है। सुनने वालों,

प्रवासी को नौकरी की तलाश हो उसके दाएं और प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वासपात्र नौकर या उदार स्वामी मिले। चुल्लैया ऊंचे स्थान पर दाएं पैसे सिर खुजाए, इच्छित कार्य में सफलता। यदि ऊंचा स्थान मलबे का ढेर हो कार्य सिद्धि। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ सिर उठाकर देखे और कान फड़फड़ाए अशुभ है। मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी उछालते दिखे या हड्डी मुंह में दबाकर घुराते दिखे भयंकर कष्ट। दाएं पैर से दाई आँख खुजाए मित्र आगमन। यदि सर को खुजाए अत्यंत प्रियजन का आगमन। गर्मी में छांव में बैठक घुराता है मित्रों से लड़ाई।

प्रवासी को नौकरी की तलाश और दाएँ प्रसन्नतापूर्वक निष्ठा करें। विश्वास पात्र नौकर या उदार स्वामी मिलता है सुनने वालों। अगर ऊंचे स्थान पर कुत्ता बैठा है और अपने सिर को खुजाता है तो इच्छित कार्य में सफलता मिलती है सुनने वालों। यदि ऊंचे स्थान पर मलबे के ढेर पर बैठा है तो कार्य की सिद्धि होती है सुनने वालों। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी को उछालता है या मुंह में हड्डी दबाकर कुत्ता घुर्राता है तो उससे भयंकर कष्ट प्राप्त होता है सुनने वालों। दाएं पैर से दाई आँख को खुजाए तो मित्र का मिलन होता है सुनने वालों। यदि सर को खुजाए तो प्रियजन का आगमन

सुनने वालों, जो आज मैंने आप सबको बताया कुत्ते के शगुन अपशगुन के बारे में, ये पुस्तक स्वप्न विज्ञान से लिया गया और इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश गौतम जी।

स्वार्थ के किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। सुनने वालों, मैंने आप सबको जो आज का कुत्ते के बारे में बताया, तो आशा रखती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

नया फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है एक फिल्म जो 2025 में नई खतीन मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल की शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ रखे हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सुन, कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में, और ये फिल्म रिलीज किया गया

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन दिए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए है 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में। और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राश मीखा ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है, और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए हैं। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है, अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, उनकी जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और आशी खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए है, और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: कार्यक्रम जो यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रस्तुत किया जा रहा है, फनकारों की दुनिया। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ से कार्यक्रम जो प्रारंभ हो रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली आसरा जी, शांता खेमाई जी, और ख़ास करके आज हमारे साथ अनुराधा जी जो ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। तो अनुराधा जी, आपको हम जरूर ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य करने वाला कभी सम्मान का और भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। और ऐसा सोच लेकर आपने हम सब के साथ सहयोग दिए हैं। तो पहला आवाज जो आपके और हम सब रेडियो फाउन द्वारा आपका और सुनेंगे, तो आप अपना इंट्रो दीजिए।
1: धन्यवाद संजय जी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग के साथ कुछ सुना सकूं, कुछ बात कर सकूं।
0: तो हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, और आप हम सब के लिए भी जो जरूर कुछ न कुछ सुनाएंगे। पर आज का कार्यक्रम में जो हम सब फनकारों की दुनिया लेकर आ रहे हैं, और उसमें ख़ास करके यश चोपड़ा के बारे में बातचीत होगा। यश चोपड़ा एक ऐसा और फनकार, ऐसा फिल्म डायरेक्टर जो हुए, बड़े बड़े पिक्चर, बड़े फिल्म बनाए। पर उस ओर बढ़ने से पहले बबली जी, आप अपना इंट्रो दीजिए, और शांता जो पैनल के पीछे बैठे हुए वो भी अपना पहले सहयोग देते हैं।
2: हाँ जी, जरूर। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: तो सुनने वालों, बबली जी भी अपना एंट्री दे चुके हैं और बबली जी के बाद में तो शांता खेमाई जी जो हमारे साथ बैठे हुए। तो शांता जी, आज फनकारों की दुनिया की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं कि हमारे सुनने वालों क्या इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे।
1: तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या मुझे को न पता, बस आप सुनते ही रहना हमारे साथ। जैसे सुने आपने खास व्यक्ति आई है अनुराधा जी, तो उसको भी हम साथ में मिलकर यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। पर उससे आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बताता है, मगर हंस के किया हुआ कार्य आपकी पहचान बताता है। इसी वाणी के साथ आपको हम यहाँ बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की भी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: सुनो हलो, आप सुनते रहना यश छोपड़ा, जो जिनका जन्म पंजाब से हुए और उन्होंने जा कर के ऐसा बड़े बड़े पिक्चर हम सब के लिए बनाए, बड़े बड़े और फिल्मों जो जाने की आ फिल्म्स उन्होंने और बनाए, उसके बारे में हम सब अभी काफ़ी जानकारी सुनने वाले हैं। पर क्यों ना शांता जी, उसकी एक फिल्म का एक झलक हम सुनते हैं। फिल्म का जो वीर सारा से निकाला गया ना,
1: उनकी आवाज़ में, यश चोपड़ा जी की आवाज़ में,
0: जरूर यश चोपड़ा जी के आवाज़ में हमें, और उसका आवाज़ पहले सुनते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहना सुनने वालों।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर

0: वीर सारा से निकाला गया है ये फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने बनाई, और उन्होंने जो नई खतिन त्वेन दर्तक में जन्म हुआ और जाकर के त्वे दर्शन त्वालफ में उनका और देहांत हो गया, उन्होंने कितने बड़े बड़े फिल्मों बनाए और जाकर के, और हमारे साथ जो आज के कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो बबली जी यश चोपड़ा जी के क्या आप लेकर आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए?
1: हाँ जी, यश चोपड़ा जी की जीवनी। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को हुआ। हिंदी फिल्मों के वे प्रसिद्ध निर्देशक थे। बाद में उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने अपने भाई बी आर चोपड़ा और आई एस जौहर के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म जगत में प्रवेश किया था। 1959 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई थी। उसके बाद 1961 में धर्मपुत्र आई। 1965 में बनी फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। बॉलीवुड जगत से फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें 2005 में भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2012 मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनका पेशा था फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता व पटकथा लेखक, और उनका कार्यकाल था 1959 से 2012 तक।

यश चोपड़ा जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और उनके दो बच्चे हैं आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई का नाम है बी आर चोपड़ा। सुनने वालों, मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ यश चोपड़ा जी की जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कौन कौन सी फिल्में बनाई और उनके परिवार में कितने लोग थे और सारी बहुत सारी जानकारी। यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा का रुख ही बदल दिया। शशि कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान को यश चोपड़ा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में लेते थे। ये फिल्म स्टार उनके बहुत फेवरेट थे, उनकी हर फिल्म में ये लोग होते थे। सुनने वालों, यश चोपड़ा के फेवरेट दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान रहे और इनको लेकर यश चोपड़ा ने कई फिल्में बनाई। यश चोपड़ा की फिल्मों में रोमांटिक सीन बहुत दिलचस्प होते थे और वह अपनी हीरोइनों को शिफॉन की साड़ी के साथ बारिश में भिगवाते जरूर थे। उनके लिए खूबसूरत लड़की का मतलब तभी होता था जब वो शिफॉन के लिबास हो और इसी लिबास में वो अपने प्रेमी के करीब आए। यश चोपड़ा के बारे में कई किस्से हैं, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यश चोपड़ा जी की पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और वह अपनी पत्नी का गाना फिल्म में ज़रूर रखते थे क्योंकि उनकी पत्नी को गाने का बहुत शौक था और चांदनी फिल्म में आपने उसका गाना ज़रूर सुना होगा। और उनके बेटे थे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई थे बी आर चोपड़ा। यश चोपड़ा के पिता लाल विलायती राज चोपड़ा ब्रिटिश पंजाब कमिश्नर में पीवीडी अकाउंट थे और पूरे परिवार के साथ जलंधर में रहते थे। यश चोपड़ा 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई बी आर चोपड़ा इनसे 18 साल बड़े थे और वह हिंदी सिनेमा के पॉपुलर फिल्म मेकर थे। सुनने वालों, आपको पता होगा कि बी आर चोपड़ा जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी। वो ज़्यादातर समाज के ऊपर फिल्में बनाते थे। उन्होंने वक्त फिल्म बनाई और माँ भारत सीरियल बनाया है और निकाह फिल्म जो कि एक मुस्लिम फिल्म थी और उसमें दिखाया कि औरत को कैसे आदमी लोग तलाक दे देते हैं, वो उसके ऊपर थे। और एक उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसाफ का तराजू, जीनत अमान और राज बब्बर को लेकर और पद्मिनी कोल्हापुरी, वो भी उन्होंने औरत के ऊपर बनाई थी। यश चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई से ग्रेजुएशन जब जलंधर से हुआ लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने लुधियाना से की थी। चोपड़ा और जौहर का रिश्ता इनके बी आर चोपड़ा और करण जौहर के दादा आई एस जौहर से चला आ रहा है। यश चोपड़ा के घर वाले उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब करते देखना चाहते थे लेकिन उनका मन भाई के साथ फिल्मों में लगता था। इनके पिता इनके लिए तैयार नहीं थे तो माँ ने इन्हें मुंबई इनके भाई बी आर चोपड़ा के पास भेज दिया जिससे यश चोपड़ा का सपना पूरा हो सके। हर किसी की तरह इनका सपना भी हीरो बनने का था लेकिन बात नहीं बन पाई और इन्होंने अपने भाई को असिस्टेंट करना शुरू कर दिया। मगर साल 1959 में इन्होंने अपनी फिल्म धूल का फूल से निर्देशन की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म को उनके भाई बी आर चोपड़ा ने निर्मित किया था। यश चोपड़ा ने अपने भाई के प्रोडक्शन में धर्मपुत्र, इत्तेफाक, वक्त, आदमी और इंसान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इस दौरान उन्हें एक सफल निर्देशक का खिताब मिल चुका था लेकिन यश जी को कुछ अपना चाहिए था।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुनी और नेहती नेहना 50 से, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फिल्मों को रखे, ये बड़े फिल्मों बनाए, पर उसमें से जब देखा जाए कौन सा फिल्म जो बनाए उन्होंने और हम सब, क्या उसका नाम आपको पता है कि कुछ मशहूर फिल्म है?
1: सुनने वालों, यश राज जी की मशहूर फिल्में हैं दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, मशाल, फासले, फिर दोहराया 90 का, और यश चोपड़ा कई अनुभव पाना चाहते थे। सुनने वालों, यश राज जी जब फिल्मों में आए तो वो हीरो बनना चाहते थे, और जो हीरो न बन सके तो फिर उन्होंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई और काम किया जाए। तो उन्होंने अपने भाई के साथ काम किया, फिर वहाँ भी उनका कुछ और पाने की तमन्ना थी, तो साल 1971 में उन्होंने अपना बैनर बनाया और अपने बैनर की शुरुआत की, और जिसका नाम रखा यश राज फिल्म्स, और अपना प्रोडक्शन उन्होंने खोला। तो फिर उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, जिसमें उनकी सबसे पहली फिल्म थी दाग, और यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई, और इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ये मुख्य भूमिकाओं में थे, और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यश चोपड़ा हमेशा अपने दौर से 5 साल आगे का सिनेमा देखते थे, तभी उनकी फिल्मों में चीज़ें नज़र आती थी, खासकर उनके निर्देशक में बनी फिल्म जिसमें वे दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझते थे, एक फिल्म का लोकेशन और दूसरा फिल्म की हीरोइन। बाकी कहानी थोड़ी कम भी हो तो चल जाता था। स्विट्जरलैंड को यश चोपड़ा ने इतने अच्छे से अपनी फिल्मों में दिखाया कि वहाँ का पर्यटन काफ़ी अच्छा हो गया। बाद में वहाँ की सरकार ने 25 अक्टूबर 2010 में यश जी को एम्बेसडर ऑफ इंटरलिकन अवार्ड से नवाजा था। सुनने वालों, स्विट्जरलैंड की सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया। इतना ही नहीं, उनके नाम से एक सड़क भी वहाँ है और एक ट्रेन भी चलाई गई है गई थी। सुनने वालों, मेरे को भी आज पता चला, देखो, कि उनके नाम से स्विट्जरलैंड में एक सड़क भी है और एक ट्रेन भी चलती है।
0: क्यों समय जब ये फिल्म निकलते थे ना, तो पहला चीज की फिल्म थिएटर के आगे बड़ा पोस्टर बनाया जाता था, बड़े पोस्टर बनाया जाता था। अभी तक तो इंडिया में ऐसा होता है
2: जी, अभी भी होता है, पोस्टर बहुत बनता है, और अमिताभ बच्चन के घर के सामने तो लोगों की भीड़ हर रविवार को, हर संडे की दिन उनके चाहने वालों की तो भीड़ लगी जाती है।
0: तो अभी तो आप कह रहे हैं कि संडे को हमारा फ्लाइट तो मंगलवार को जाना है और बृहस्पतिवार को वापसी है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। पर दोस्तों, ये बात है कि ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के और जा करके जो मिलना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि अभी अनुराधा जी ने ये संदेश में रख भी दिया कि अमिताभ बच्चन जैसे कि हर रविवार को और अपने फैंस को लिए और निकलते हैं, खास करके फैंस के लिए ना
2: जी।

0: जो सुनते नहीं हो दिलों के दुहाई, शांता जी जो सुनते नहीं हो दिलों के दुआई, और दुआई के अंतर्गत जो हम आज का विषय कलाकारों जो हमारे लिए अपने ओर से अपने कला से इतना बड़े बड़े फिल्म बना करके और छोड़ करके चले गए हैं आज, तो बबली जी और क्या संदेश है?
1: सुनने वालों, यश चोपड़ा जी चांदनी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनको कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो वो सोच रहे थे मैं किसको फिल्म में लूँ, क्योंकि उनकी दो फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, कभी कभी और सिलसिला, और इसी कारण उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। और इसी दौर में यश चोपड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस समय श्रीदेवी जी ने उनका साथ दिया और बिना फीस मांगे फिल्म में काम करने को तैयार हुई। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद श्रीदेवी जी ने उनकी फिल्म लम्हे में भी काम किया और वह यश चोपड़ा जी की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई। यश चोपड़ा के दिल के करीब शाहरुख खान थे और वह शाहरुख खान को अपना बेटा मानते थे। शाहरुख खान को रोमांस करना यश जी ने ही सिखाया। इनके निर्देशन में शाहरुख खान ने डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जान की। साल 2012 में यश चोपड़ा ने अपनी मौत से ठीक एक महीने पहले शाहरुख खान को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म जब तक है जान के रिलीज़ के बाद वे रिटायरमेंट ले लेंगे और अपना सारा समय परिवार को देंगे, जिस बात पर शाहरुख खान इमोशनल हो गए थे। यश चोपड़ा को अक्टूबर में डेंगू बीमारी हो गई और 21 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और 13 नवंबर को बेहद शांति के साथ उनकी फिल्म जब तक है जान रिलीज़ की गई थी। यश चोपड़ा जी के निधन पर पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया था और रोमांस का किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा के निधन पर हर कोई रोया था, खासकर शाहरुख खान को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने मीडिया में यह कहा था कि उन्होंने एक बार फिर अपने पिता को खो दिया। साल 2001 में यश चोपड़ा को भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद 2005 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। सुनने वालों, ये दोनों जो अवार्ड हैं ये भारत के सबसे ऊंचे अवार्ड माने गए हैं, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सुनने वालों, ये जब सिनेमा की शुरुआत हुई, बॉलीवुड में फिल्म बनने शुरू हुई, तो दादा साहब फाल्के जी ने सिनेमा की शुरुआत की फिल्में बनाने की और उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी शुरुआत हुई। उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: और इसी प्रकार से वीर सारा को बनाया गया। उसमें खास करके सभी और लता जी भी अपना आवाज दिए और सभी कुछ यंग सिंगर्स ने सोनू निगम आदि और जाकर के अपने आवाज दिए ना
1: जी। वीर सारा जो कि 2004 में बनी और देखिए ये अभी 2023 वर्ष चल रहा है तो 20 साल होने को आए, 19 साल अभी तक वीर सारा का नाम लेते ही हमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी का जो किरदार उन्होंने लॉयर का किरदार निभाया, आज तक उस पिक्चर के संगीत को याद करके और एक यादगार फिल्म जी उन्होंने बनाई।
0: आप कह रहे हो, मेरा सामने वो भी और चित्र आ रहे हैं कि बिल्कुल एक बिसुंदर फिल्म जिन्होंने बनाया। तो शांता जी, मैं देख रहा हूँ पिटारा से कुछ और निकलने वाले हैं।

तो ये फिल्म लम्हे से हम सब निकालने वाले हैं, ये गीत जो हमारे और शांता जी जो पिटारा से भर के लाए हैं।

प्यारे प्यारे सुनने वालों, आप तो सुन रहे हैं कि हम यशराज चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ सोचती हूँ कि आपको भी थोड़ा दच में यशराज चोपड़ा जी के बारे में आपको भी बता दें। यशराज चोपड़ा जी, जो इनके जन्म हुआ है 7 सितंबर 1932 एन है ओवरलेट ऑफ 21 अक्टूबर 2012, वॉज एन इंडियाज फिल्म रेजिसर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट दी इन द हिंदी सिनेमा वर्क द ऑपरेक्टेंड फोर्सेटर फॉर द फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटी बद्रेव यश चोपड़ा फिल्म। या तो चोपड़ा ऑनफिंग फर्स्किलेंड प्राइजन वार ऑनडर 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स है वर्ड बस्कोट आज एन फॉर द बेस्ट इंडियाज फिल्म मेकर फॉर सैन बैद्राग आन फिल्म एयर द इंडियाज रेगेरिंग हेम इन 2001 मेट एन दादा साहेब पाल के अवार्ड्स वॉट बिसोंदर एंड इन 2005 मेट द पद्म भूषण वाओ एंड ब्रिट्स अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा 2006 स्कोंक हेम एन लेवंस लंग लिटमाटस्काप वार मे है द eerste Indiër was die een eer ontving. तो यहां से आपको छोटा ही रूप में श्री यशराज चोपड़ा जी के बारे में हमने यहां से आपको बताया।

सुनने वालों, यहाँ तक था कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जिसमें संदेश रखा गया। आज का संदेश में हमारे मशहूर, हमारे जो बड़े प्रोडक्शन वाला यशराज जी, उसके अंतर्गत में कुछ संदेश रखा गया। आशा यह रखता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। हमारे साथ सहयोग दिए अनुराधा जी, बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और फिर मिलेंगे।

हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे से डड़े। तो दोस्तों, जैसे कि भी आपने ये गीत को सुने और जो कि जा करके हरिओम सरन जी ने अपने आवाज़ से ये सुंदर धुन को दिए है। हमारा विषय जो आज क्या रखा गया है वो है कि 16 महादान कौन सा है। तो आप किस प्रकार के दान किए होंगे, किस प्रकार से करने वाले होंगे और कैसे किया जा सकता है और क्या है, क्योंकि कहावत है आज का विषय, मतलब 16 महादान कौन से है आज का विषय ये है। अभी हम सब उसके बारे में जरूर जानकारी, जो यहां मैं देख रहा हूं लिख करके रख दिया गया है, तो जरूर उसे आपके साथ बांटने वाले हैं। और खास करके बबली जी, आज मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा गीत उसमें जोड़ा गया है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, मलयालम। तो साउथ की भाषा है ये, मलयालम किस ओर है, किस ओर ये बात किया जाता है?
1: साउथ इंडिया में।
0: साउथ इंडिया में,
1: हाँ जी, वहाँ पर 5 प्रकार की भाषा बोली जाती है।
0: 5 प्रकार की भाषा बोली जाती है। और ये गीत जो मैं देख रहा हूँ, तो पता नहीं हम सब कुछ समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, पर कहने के तात्पर्य ये है दोस्तों, आज अभी हम सब ये संदेश को जो सुनने वाले हैं कि 16 महादान कौन से है और क्या क्या आप अपने जीवन में दान कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, और इसे सुन के आपके जीवन में और कुछ संदेश आएगा या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकता हूं, पर हमारे विशेषज्ञ लोग कुछ और भी संदेश रखे हैं और वो हमें बबली जी सुनाने वाले हैं। तो बबली जी, कौन सा संदेश हमारे विशेषज्ञ लोग आज हमारे लिए और भी रखे हैं?
1: हाँ जी, एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था, उसको सभी जानते थे।
0: सक्रिय माने तो
1: कि संगठन मींस उसकी एक अपना ग्रुप था।
0: तो जैसे बबली जी, जैसे हम लोग सक्रियम, जैसे हम लोग कहते सत्संग,
1: सक्रिय मींस वो उसमें शामिल रहता था। सक्रिय मींस
0: ऐसा,
1: हाँ जी, मिलजुल के उसमें रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा। निष्क्रिय मीन्स अलग थलग,
0: यानी कि बदलाव हो गया उसका जीवन।
1: हाँ जी, अलग अलग रहने लगा,
0: अलग अलग रहने लगे। तो दोस्तों, हाँ, जैसे कि संदेश है कि एक आदमी जो निष्क्रिय,
1: हाँ जी, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था।
0: तो मुखिया माने तो जो यानी कि जो सत्संग का, जैसे हम कहते हैं हमारे लीडर,
1: हाँ जी,
0: लीडर तो तनी शायद यौस्तवर्त नहीं है, पर हमारे मुखिया यानी कि
1: मुखिया में जो सब काम संभालता है। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग तपा रहा था। उस आदमी ने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते ही देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और शांति से बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है।
0: ऐसा होता है ना कि कभी हम अकेले पड़ जाते हैं और कुछ दिनों अकेला जो हो जाते हैं, तो जो कोई आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, बहुत खुशी महसूस होती है।
0: खुशी महसूस, क्योंकि ऐसा हुआ कि अब देखो, व्यक्तिगत बात तो यहाँ रेडियो से नहीं चलाना चाहिए, पर ऐसा हुआ कि मैं अपने मित्र के पास गए गत दिनों में, और दूर शहर, यहाँ दनहाख छोड़कर दूर शहर, और उससे बात हुआ तो उन्हें उनका ये था कि ये जब से महामारी आया कोई हैश बसुक नहीं करते। कोई परिवार के घर नहीं जाते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो उनमें ये था कि एम दाखिये ऐत फॉर यो और फॉर ओन्स अन दाखिये बसुक, तो ऐसा हो जाता है कि लोग कितना खुश हो जाता है जैसे कि ये व्यक्ति के।
1: हाँ जी। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ ही देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्ज्वल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज़्यादा कुछ ना थी।
0: तो कहने के तात्पर्य यह हो जाता है कि लोग जो अकेलापन में रहने लगता है, और कुछ खास करके जो ये महामारी आया ना, महामारी जो आया तो लोग अपने घर से बंद हो गए थे, हम सभी डर गए थे। ऐसा हुआ कि अब फिर दोबारा धीरे धीरे फक्सैन बन गया, सब कोई निकलने लगा। पर कुछ कुछ स्थानों है जहाँ पर जैसे ब्यूथ हाउस आदि में हम सब उपस्थित होते थे।
1: हाँ जी।
0: अब प्रोग्राम बनने लगा है कि वहाँ पर भी हम लोगों ने इकट्ठे होंगे। मंदिरों आदि और गिरजाघर मस्जिदों भी अब ठीक रूप से खुलने लगा है, और ख़ास करके जो अक्तिफितैत है इधर उधर का, जैसे कि जो अतरक्षी पार्क आदि है, आदि, ये सब अब खुलने लगे हैं। और कितने लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, तो जरूर अपने आप को सावधान रखना है। पर बबली जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में ये पूरा वृतांत के आगे बढ़ाएंगे।
1: हाँ जी जरूर, पहले गीत लगा दीजिए।
0: और गीत का बोल जो फिल्म से निकाला गया है, बिसोंदर फिल्म जो बनाया गया बाहुबली, और उससे निकाला गया ये।
1: हाँ जी, ये भी साउथ की फिल्म है, बहुत अच्छी, बाहुबली।
0: बाहुबली,
1: हाँ जी,
0: तो साउथ का फिल्म। तो चलो उस गीत की ओर बढ़ते हैं, और फिर कार्यक्रम सुनने वालों सुनते रहना, क्योंकि संदेश आज काफी है।

0: ये सुंदर गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम जो बाहुबली से निकाला गया ये गीत दोस्तों, और ये संदेश जो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं, अभी आज का विषय जो हमारा विषय विशेषज्ञ लोग विषय रखे हैं कि 16 महादान कौन से है, उस ओर जरूर अभी हम सब बढ़ने वाले, पर कुछ संदेश और जो होता है तो हम सब जरूर आपके साथ उसे और जरूर रखते हैं आपके लिए। तो बबली जी आगे का संदेश क्या है?
1: हाँ जी, इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही सांप्रतिक अभिवादन किया। कम से कम शब्द बोले जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखरने लगा। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है।
0: तो कहने की ये बात हो जाता है दोस्तों, ये संदेश में ये सीख मिलता है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जब सत्संग में होते तो जरूर उसमें क्या कहते हैं कि गर्मी रहते हैं। अगल जैसे कि ये संदेश में लकड़ियों जैसे कि भारत देश में जैसे हमारे यहाँ पर फर वार्मिंग होता है, वहाँ बहुत कम जगह पे होते हैं और रात को लोग और इस प्रकार से लकड़ी जला करके अपने हाथ को तापते हैं ना।
1: हाँ जी, आग सेकते हैं,
0: आग सेकते हैं।
1: हाँ जी,
0: और आग सेक करके अपने आप को गर्म रखते हैं।
1: हाँ जी,
0: और ये संदेश इसमें ये हुआ कि जैसे कि किस चीज में वो आग लगाते हैं बबली जी, बाल्टी के तरह होता है या स्पेशल चीज होता है?
1: लोहे की चीज में तो बाल्टी तो प्लास्टिक होता है, पिघल जाएगी तो।
0: हाँ, लोहे के एक ऐसा चीज में जिसमें लोग आग लगा करके और उसमें अपने हाथ को तापते रहते हैं।
1: हाँ जी।
0: और कहने की तात्पर्य है कि उसमें जब तक इकट्ठा लकड़ियां रहेंगे और आग रहेंगे तब तक आग रहेगा, जब आप उसमें से निकल जाएंगे लकड़ी निकाल देंगे तो आग भी बुझ जाएंगे। और जी इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है,
1: कहने का मतलब यही है इसका संदेश का कि मिलजुल कर रहना चाहिए, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता।
0: अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, पर यहाँ एक देश है जो हलाम देश है ना, तो यहाँ कितने हम सभी अकेले रहते हैं। और उस पे जरूर ध्यान दो कि कुछ ना कुछ खोजो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसे आप के और मित्रता बढ़ते रहे, आपके कोई कहने वाला रहे और खास करके
1: समय भी कट जाए,
0: समय भी आराम से कट जाते हैं।
1: हाँ,
0: हम क्यों ना एक और गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ जी जरूर,
0: एक और गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर हम अपना विषय जो आज हमारा विषय है, विषय जो बड़ा गंभीरता से, क्योंकि इस पे मैं देख रहा हूँ कि लोग भी सोच रहेंगे कि क्यों ऐसा है कि 16 महादान कौन से है, और जरूर लोग कितने अपने जीवन में दान किए होंगे, दान क्या है और क्या दान यही है जो सिर्फ पैसे से किया जा सकता है या दान और भी चीजों से किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का संदेश 16 महादान कौन से है, हम अभी उस ओर बढ़ने वाले हैं, पर एक गीत जो हम इस पर चुन कर रखे हुए हैं आपके लिए उसे पहले चलाते हैं।

0: ये गीत कौन सा भाषा में है?
1: मराठी।
0: ओ, इसको मराठी कहते हैं।
1: हाँ जी।
0: और ये लता मंगेशकर जी ने मराठी में।
1: हाँ जी।
0: तो मलयालम और मराठी में अंतर ढेर है?
1: बहुत अंतर है। मराठी थोड़ी सी हिंदी जैसी लगती है, अब मलयालम तो बिल्कुल समझ नहीं आती।
0: वो बिल्कुल नहीं समझ
1: नहीं। लता मंगेशकर जी तो खुद मराठी थे। तो
0: ऐसा?
1: हाँ जी।
0: और जिनका जन्म 28 सितंबर 1923 में हुआ और गत फरवरी 6 फरवरी को और जो हम सबको छोड़कर चले गए 20 साल के आयु में वो गीत।
1: हाँ जी, उनको तो भारत कोकिला कहते थे।
0: भारत कोकिला।
1: हाँ जी, जैसे कोयल की आवाज़, तो कोयल को कोकिला कहते थे, तो वैसे।
0: और उनके गीतों देखो और भी भाषाएं में भी है और जा करके हम सब के लिए ये जिंदगी भी हर जब तक जीवन रहेगा लोग सुनते रहेंगे।
1: हाँ जी।
0: और उनके आवाज कितना सुरीली, कितना सुंदर, और जैसे कि आपने कहे कि कोकिला भारत के कहा जाता था। जैसे आज का संदेश हमारा

0: और संदेश जो है कि 16 प्रकार का दान, कुछ और आगे बढ़ाइए बबली जी, ताकि हम सब और भी गीतों भी, मैं देख रहा हूँ आज काफी गीतों का तैयारी किया गया है, तो और दूसरा गीत की ओर बढ़ पाएंगे, पर पहले हम कुछ और संदेश सुनेंगे।
1: हाँ जी, हिंदू संस्कृति में दान और त्याग मुख्य है, जबकि असूरी संस्कृति में भोग और संचय की प्रधानता रहती है। पुराणों व स्मृतियों में 16 महादान बताए गए हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में दान और त्याग का बहुत महत्व है।
0: दान और त्याग का महत्व,
1: हाँ जी। अब बाकी जो असूरी है, जो असुर है,
0: हाँ, जो नियमों का नहीं पालन करते,
1: उल्लंघन करते हैं, उनमें कमती है, हाँ जी, वो भोग और उसमें ज्यादा अपना समय बिताते हैं,
0: विपरीत कर देते हैं,
1: हाँ जी।
0: और जैसे कि अभी आपने सुना है कि ये छोटा संदेश है कि हमारे जो दान और त्याग, इसमें एक महत्व है, क्यों ना हम एक दूसरा गीत की ओर बढ़ते हैं और अभी संदेश और आगे बढ़ाया जाएगा।
1: हाँ जी, मेरे ख्याल से ये शायद मलयालम गीत है।

0: कुंडा मुकुंडा ये सुंदर गीत जो भाषा भी मेरे ख्याल से ये जरूर मलयालम था ना बबली जी।
1: अब हो भी सकती नहीं क्योंकि मैं भी नहीं समझती तो मैं भी नहीं जानती, मलयालम है, तेलुगु है, तामिल है कि कन्नड़ है, 5-6 भाषा चलती हैं साउथ इंडिया में।
0: साउथ इंडिया में 5-6 भाषा चलते हैं। और जैसे कि वैसे मैंने सुना था कि भारत में 26 जो भाषा जो ऑफिशियल भाषा,
1: हाँ जी,
0: और वैसे भी अपने स्थान से भी जुड़े हुए कितने और थे, लगभग 200 भाषा,
1: हाँ छोटी मोटी और हैं, बहुत
0: छोटी मोटी और है। तो दोस्तों हमारा संदेश जो आज का है, हमारा जो आज का विषय है, तो बबली जी और आगे उसे हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर। तुला दान या तुला पुरुष दान, हिरण्या गर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष दान, गौस हस्त दान, हिरण्या काम धेनु दान, हिरण्या शव दान, हिरण्या शवरथ दान, हेम हस्तीरथ दान, पंचम लंग गलक दान, धारा दान, विश्व चक्र दान, कल्प लता दान, सप्त सागर दान, रतन धेनु दान तथा महाभूत घट दान, ये सब दान के नाम हैं।
0: अलग अलग नामों से ये दानों का नाम है।
1: हाँ जी।
0: और ये गीत जो हमने चुन करके रख चुके हैं बबली जी,
1: हाँ जी,
0: पर गीत की ओर बढ़ने से पहले हमें भी अपना और ये संदेश को रखना है कि हमारा जो समय पे न्यूज कमर्शियल्स ये भी चलना चाहिए।
1: हाँ जी जरूर।
0: तो एक गीत और चला देते हैं, फिर गीत के बाद में हम सब कमर्शियल की ओर बढ़ जाएंगे।
1: हाँ जी।

0: जो ज्ञान दान कहलाता है।
1: नमस्कार सबको। थोड़ा सा विलंब होने के कारण यहाँ पे काम तो चल ही रहा है। संजय जी बड़ा अच्छे से किए हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अपना कार्यक्रम लेके बबली जी ने जो बढ़ाया उसको आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को करेंगे। संजय जी ने बहुत ही अच्छे सुरों में अपना रखा और अब हमको चाहे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 16 महादान, जो दान है उनके भी महादान वो 16 प्रकार से रहते हैं। तो वो 16 प्रकार के जो महादान हैं कुछ बबली जी ने आपको बताए होंगे, आप जाने होंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ तुलादान की तरफ। तुलादान या तुला पुरुष दान, इसका मतलब है कि हिरण्य गर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष दान, गोशैर्ष दान, हिरण्यकाम धेनु दान, हिरण्याश्रु दान, हिरण्यस्वरथ दान, हेमहस्तिरथ दान, दान पंचलांकक दान, धरा दान, विश्वचक्र दान और कल्पता दान, सप्तसागर दान, रत्न धेनु दान तथा महाभूत दान। ये दान सामान्य दान नहीं है अपितु सर्वश्रेष्ठ दान है। ये सभी दान सामान्य आर्थिक स्थिति वालों के लिए संभव नहीं है। इनमें से एक भी दान यदि किसी के द्वारा संपन्न हो जाए तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है। जो निष्काम भाव से इन 16 महादानों को करता है उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। तुला दान या तुला पुरुष दान, इसके बारे में समझते हैं कि तुला दान और तुला पुरुष दान क्या होता है। 16 महादानों में पहला महादान तुला दान या तुला पुरुष दान है। तुला दान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुला दान किया था, उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि इसे किया। कलिकाल में यह तुलादान प्रायः काफ़ी प्रचलन में है। कलिकाल में बहुत लोग तुलादान करते हैं और अभी बहुत प्रचलन में चल रहा है। इसमें तुला की एक और तुलादान करने वाला तथा दूसरी ओर दाता के भार के बराबर की वस्तु तोलकर ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तो हॉलैंड में करते हैं तुलादान।
2: राजेंद्र जी, इसके तो मैं ये वृतांत को तो मैं पहला बार सुन रहा हूं और जरूर कुछ होता होगा यहां पर तुला दान के अंतर्गत। पर जैसे कि मैं गत दिनों सुना कि लोग दान के लिए यहां से भारत जाते हैं भंडारा कराने के लिए और 700-800 लोगों के, तो ये भी उसमें से एक चीज है, ये समझने वाला बात हो जाता है।
1: हाँ, तो इसको हम समझा देते हैं कि तुला दान का क्या महत्व है। तुला दान का मतलब होता है कि एक तरफ जैसे कोई बच्चा होता है उसमें ब्राह्मण कहते हैं कि किसी का ग्रह भारी है तो तुला दान कर दो, मतलब एक तरफ उसको रख दो, व्यक्ति को रख दो, और दूसरी तरफ उसके बराबर अन्न रख दो, चावल या दाल या गुड़ या कुछ भी कुछ चीज़ जो दान वाली चीज़ है, आटा या कुछ भी चीज़, अन्न के बराबर अन्न दान। तो राजा महाराजा लोग तो स्वर्ण दान किया करते थे, एक तरफ सोना रखते थे, दूसरा तरफ मनुष्य को रखते थे, बराबर तोल के दे देते थे। तुला तराजू के बराबर तोल के ब्राह्मण को दिया जाता है।
2: ऐसा
1: तो आप लोग तो ब्राह्मण हैं, आप लोगों, मुझे तो लगा कि आपको मिला होगा कहीं तुला दान स्वर्ण का। तुला दान के बारे में बहुत ही अच्छा लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी और जिनका कुछ कष्ट रहा या उनके तुला दान करने से वो सब दूर हो जाता है।
2: पर भारत में ऐसा होता है?
1: हाँ, भारत में तो बराबर होता है,
2: खूब होता है,
1: खूब होता है।
2: तो क्यों ना हम एक गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, और गीत के बाद हम सब फिर ये कार्यक्रम को बढ़ाने वाले हैं।
1: जी जरूर।

0: बहुत ही सुंदर जो नगमा था, शंकरा रे शंकरा, सबने बड़े ही प्रेम से सुना होगा और उसका लुत्फ भी उठाया होगा। बात चल रही थी तुलादान की, तो तुलादान का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए तुलादान में इंद्रादि 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुलादान करने वाला अंजलि में पुष्प लेकर तुला की 3 परिक्रमा इन मंत्रों का उच्चारण करके करता है। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षीभूते सनातनी पिता महीन देवी तम निर्मिता परमेष्ठिना त्वाधृता जगत सर्वं सैस्त्वास जगत्गणं सर्वभूतात्मभूतेस्ते नमस्ते विश्वधारिणी। ये मंत्र होने चाहिए। हे तुले, तुम पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हारे एक पलड़े पर सभी सत्य है और दूसरे पलड़े पर सौ असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। मुझे तोलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार कर दो। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर दानदाता तुला के एक तरफ बैठ जाए और ब्राह्मण गण तुला के दूसरे पलड़े पर दान की जाने वाली वस्तु को तब तक रखते जाए जब तक कि तराजू का पलड़ा भूमि को स्पर्श न कर ले। आप समझे कैसा?
1: भूमि का
0: तराजू का दो पलड़े होते हैं ना, तराजू के दो पलड़े होते हैं।
1: तराजू कहते हैं जो, जैसे कि सन्नाम में हम लोगों ने
0: तोलने वाला,
1: तोलने वाला।
0: हाँ,
1: आजकल तो डिजिटल हो गया है, पर
0: पहले
1: तोलना,
0: टंडी वाला,
1: टंडी वाला। हाँ,
0: तो एक पलड़े में बैठ जाते थे, दूसरे पलड़े में सामान रखते थे उसके बराबर।
1: तो राजेंद्र
0: पलड़ा भारी, जब पलड़ा उठ जाएगा नीचे से तो बराबर हो जाएगा ना, तब तक वो सामान रखना उसमें जब तक बराबर ना हो जाए। बराबर समान जी। तुलादान में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें तुला से उतरकर दानदाता को तोले गए दान की वस्तु तुरंत ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। देर तक घर में रखने से दानदाता को भय, व्याधि तथा शोक की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही दान दे देने से मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
1: उत्तम फल को प्राप्ति होती है।
0: हाँ, उत्तम फल की प्राप्ति
1: यानी कि कुछ करो, मन में इच्छा रखो तो उसे एकदम पूरा कर दो।
0: हाँ,
1: पूरा कर देना चाहिए।
0: अब ये समझने की बात है कि किन किन वस्तुओं का तुलादान हो सकता है। प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर के भार के बराबर स्वर्ण तोला जाता था, सोना
1: का, जैसे कृष्ण भगवान वाला।
0: हाँ, किंतु कलयुग का स्वर्ण अन्न है, लेकिन आजकल तो स्वर्ण तो इतना कोई नहीं दे सकता है, अन्न देते हैं। अन्न में कलयुग में स्वर्ण के स्थान पर सप्त धान्य या अन्न से तोला जाता है। 7 धान्य होते हैं,
1: 7 प्रकार का जो दाल होता है।
0: नहीं, दाल नहीं, धान।
1: ओ, सप्त धान्य।
0: हाँ, सप्त धान्य,
1: जैसे कि गेहूं,
0: चावल,
1: जौ, आटा, ऐसा बाजरा।
0: हाँ, ये सब चीजें। रोगों की शांति के लिए भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए लोहे से तुलादान किया जाता है। अगर कोई बीमार है तो एक तरफ लोहा चाहे रखे, दूसरी तरफ मनुष्य, तो उसके बराबर दे दे तो वो रोग दूर हो जाते हैं। और कामनाएं हैं तो उनकी पूर्ति करने के लिए, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने के लिए रत्न है, चांदी है, लोहा। चांदी तो मैंने देखा, अभी देते हैं लोग, चांदी तो सस्ता है ना।
1: ऐसा
0: चांदी ज़्यादा महंगा ना रहा,
1: यहाँ ना मारा,
0: 45-50 हज़ार रुपये किलो।
1: अच्छा,
0: यानी 700
2: लोग देते,
0: 700 यूरो के करीब एक किलो। धातु, घी, लवण मतलब नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फलवा, विभिन्न अन्नों से तुलादान किया जाता है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम जानते हैं?
1: कुमकुम बोले तो हल्दी?
0: नहीं, हाँ, कुमकुम। कुमकुम एक हल्दी भी होता है और एक लाल लाल जो
1: सिंदूर की तरह
0: टाइप का होता है। हाँ, लवण, नमक और गुड़ का तुलादान करना चाहिए। कुमकुम के स्थान पर कुछ लोग हल्दी दे देते हैं, लेकिन कुमकुम एक लाल जो होता है, कुमकुम
1: सिंदूर की तरह।
0: तुलादान की महिमा क्या है? तुलादान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या व झूठी गवाही जैसे अनेक पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। तुलादान करना जरूरी है कि अगर ये सब पापों से मुक्त होना है तो ये सिर्फ चीज करनी चाहिए।
1: तो कितने लोग जाने अनजाने में ये गलतियां तो किए होंगे, झूठी गवाही दे होंगे।
0: चाहे सब लोगों को तुलादान करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मामा को तुलादान कराते हैं आज। आधी व्याधि ग्रह पीड़ा व दरिद्रता के निवारण के लिए तुलादान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको करने से मनुष्य को अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर किसी को बीमारी है या गरीबी है तो उसको तुलादान जरूर करना चाहिए, तुरंत उसका असर होता है। यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवत प्रण बुद्धि से तुलादान किया जाए तो तुला पुरुष का दान करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से, मतलब हमको कोई इच्छा नहीं है, दान कर लिया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ प्राप्त होती है। अनेक कल्पों तक वहाँ रहकर जब पुष्यों के क्षय होने पर पुनः जन्म लेता है तो धर्मात्मा राजा बनता है। अगर आपको चाहे राजा बने, जिसको चाहे राजा बने, तो उसको बगैर निस्वार्थ भाव से, मतलब ये नहीं कि मैं ये तुला दान कर रहा हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, कोई भाव न रहा, तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जब वहाँ बहुत समय तक रहता है तो इसके बाद जब उसका दोबारा कभी जन्म हो तो राजा बनता है।
1: यानी कि राजा के घर से जन्म लेंगे,
0: राजा बनेगा उसमें,
1: राजा बनेंगे।
0: हाँ, तो कितना महत्व है तुला दान
1: का। महत्व बात है दोस्तों, ये बात हो जाता है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से होता है, और आत्मा धर्म से होता है। तो ये कुछ हम सब ये संदेश जो आपके लिए रख देते हैं इसमें। पर राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का संदेश काफी है। राधा कैसे ना जले,
0: हाँ
1: तो चला देते हैं राजेंद्र।
0: मधुबन में जो है अभी सुनेंगे तो सारा समझ जाएंगे।

0: राधा कैसे न जले, मधुबन में अगर सब लोग आ जाएंगे तो राधा तो जलेंगी जलेंगी। बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गीत सुना है। बात चल रही थी तुलादान की, तो तुलादान में इतना ही नहीं, इस प्रसंग को पढ़ने या सुनने से, तुलादान को देखने या स्मरण करने से भी मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि किसी कामना से तुलादान किया जाए तो वह दाता की मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। किस स्थान पर करें तुलादान, तुलादान किस जगह पर करना चाहिए? तीर्थ स्थान में, मंदिर में, गौशाला में, बगीचे में या पवित्र नदी के तट पर, अपने घर पर भी कर सकते हैं। पवित्र तालाब के किनारे या किसी पवित्र वन में तुलादान करना श्रेष्ठ होता है। इन जगहों पर तुलादान कर सकते हैं। भारत में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश मंदिर के पास एक तुलादान मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा जी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। इस मंदिर में सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए तुलादान किया जाता है। कामना रहित या दान धर्म परम श्रेष्ठ सोपान है। जो दान धर्म में दृढ़ रहता उनका सब दिन कल्याण होता है, ऐसा आचार्य विजय जी के शब्दों में डॉक्टर हूँ कह रहे हैं। तो मैंने देखा है द्वारिका मंदिर के बगल में एक जगह पानी का दान होता है।
1: पानी का दान?
0: हाँ, तो वहाँ पे लोग पानी का दान करते हैं और कहते हैं कि एक टैंकर मेरी तरफ से, दो टैंकर, इस प्रकार से दान होता है। द्वारिका मंदिर जो द्वारिकाधीश है उसके बगल में, द्वारिकापुरी के एकदम उसमें समुद्र के किनारे में है वहाँ पे, और उसके बगल में गोपी चंदन है। वो जो मिट्टी है वो सारी गोपी चंदन के नाम, वहीं से सब चंदन आता है। वो मिट्टी उठा लो एकदम, लगा लो माथे पे तो चंदन हो जाता है। चंदन है ही वो, गोपी चंदन बोलते उसको। तो इस प्रकार से सब लोगों ने बड़े ही प्रेम से वृतांत सुना तुलादान का और इसका महत्व समझा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को कुछ इस प्रकार का कष्ट रहा है, कुछ करे तो अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुलादान करे या उनको अच्छा लगे तो अपने निवारण कर सकते हैं। तो क्यों ना संजय जी, आप कुछ इस विषय में और कुछ कहना चाहते हैं?
1: राजेंद्र जी, मैं तो ये विषय को पहला बार सुना हूँ, और जैसे कि आपके साथ मैंने ये और ये सारा वृतांत को सुन करके और मन में कुछ हो रहा है कि कभी अपने जीवन में तुलादान के कुछ ना कुछ तो करना आवश्यकता होता है, और उसके बारे में अभी तो पहला बार सुना हूँ, तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा अपना जीवन में, क्योंकि ये जीवन, ये जो शरीर मिला है तो इसे बिन तन सत्संग नहीं हो सकता। तो ये शरीर जब मिला तो कुछ ना कुछ तो करना है, और ये सुंदर सुंदर संदेश जो हम सबको कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो 188 देशों तक सुना जा सकता है, हमारे विशेषज्ञों लोग जो हम सबके लिए ये सुंदर सुंदर संदेश को रखते हैं, तो हमारे सभी सुनने वालों भी इस संदेश को लेकर के और जरूर अपना लाभ उठाने को, अपना जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रकाश जरूर डालेंगे। क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी, और गीत के बाद में हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं।
0: जो गीत के बोल हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं। मोही रंग दो लाल,
1: मोही रंग दो लाल,
0: तो चलाया जाए,
1: चलाया जाए।

0: मोहे रंग दो लाल, बहुत ही जो सुंदर सा गीत सुना सब लोगों ने, बड़ा ही आनंद आया सबको। अभी हमारे मामा जी ने बोला है कि जो रुक्मणी मंदिर है द्वारिकाधीश के बगल में, वहाँ पे दान किया जाता है।
1: राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीक़ा से और हम सबको ये सुंदर संदेश जो 16 महान दानों में से और हम सबको सुनाए, जिसमें आपने और ज़्यादा तादाद में तुला दान को निचोड़ा और हम सबको पूरा तरीका से संदेश दिया। हम अपने सुनने वालों के लिए जरूर कुछ और कहना चाहूँगा। सुनने वालों, यहाँ ये बात हो जाता कि भक्ति का भाव। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ का पूजा कर शुरू और तुम्हारे दुख दूर होंगे। यानी कि दूसरा दोस्त ने, जो कितने साल और उन्होंने पूजा किया कृष्ण भगवान का, कोई लाभ नहीं हुआ, तो दूसरा दोस्त ने ऐसा संदेश सुनाते हैं कि काली माँ का पूजा करो। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, अगले ही दिन वे एक काली माँ का अवमूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक अवतार पर और रख दिया, यानी कि मंदिर के ऊपर एक रैक इस बना था और उस पे रख दिया और काली माँ का मूर्ति मंदिर में रख कर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके और दिमाग में ख्याल आया, जो अगरबत्ती धूपवती काली को और जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी और सुगंध होंगे। ऐसा उसके दिमाग में आया और ऐसा करता हुआ उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण जी के और मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के और मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा कि इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हारे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। तो दोस्तों, ये समझने वाले बात हो जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

राजेंद्र जी, मेरी और से भी एक संदेश है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर से किसी कुत्ते या बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि वह डर कर भाग जाएगा। अब आप वही पत्थर फिर लीजिए और मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए और देखिए कि मधुमक्खियाँ आपका कैसे स्वागत करती हैं।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वाले श्रोताओं को जो इस प्रकार से हमको बड़ी अच्छी तरह से सुनते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है कि ये सब सुन के उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती होगी और जो ज्ञान की रोशनी है उससे तो ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। क्यों संजय जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। जैसे कि आपने ये कार्यक्रम को सुने और हमारे साथ देने वाले बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश के माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचे होंगे। हम जरूर ये कहना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने ये कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

अच्छे से फरमाए कि दवा दे या जहर तेरे दर पर बस आए हैं। साइली कमले जी की आवाज़ में हमने यहाँ से और श्रवण किए। वर्दन, वर्दन यानी कि शब्द, वर्दन से हम फाक फेल geven je kracht, geven je troost. Woorden, woorden geven je hoop. Woorden geven je hoop. Hoop maneki asha. Woorden geven je liefde. Woorden geven je verdriet en pijn. Woorden, shabda. Woorden, ze hebben vaak veel kracht. Woorden, woorden me इतनी ताकत है कि हम समझ नहीं सकते हैं। वर्दन से हम फाक फेल क्राख मेर दान अन मेंस फाक फरवाख्त।